साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। हर युग युग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। हर नाक्ष दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया। अहंकारियां निंदकां पिठ दे, नाम देओ मुख लाया।

जाए ना ओह मरै ना होवै सोग देंदा रहै ना चूकै भोग गुण एहो होर नाहीं कोए ना को होआ ना को होए जे वड आप ते वड तेरी दात जिन दिन करकै कीती रात खसम विसारह ते कम जात नानक नावै बाज सनात

साध पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वड अवर ना कोई तू जुग जुग एको

आओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा कर है तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया।

के सुखी, एक एक की पीर पशाने, काट काट के पट पट की जाने। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा करत तब देह अपारा। जब अकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह पर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम

कहूं फूल राजा वै बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर इकट्ठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबारो असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत

तुद जिन कौ से नाम हर कह लागे, कहे नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोर।

0: उचरत गुण गोपाल जासो दूर ते जाम पावे। वाहे गुरु जी का खालसा,
1: वाहे गुरु जी की फतेह। आओ सत्कार जो सत्संग जी महाराज बख्शिश हुई है आप चंदा ने पितर गुरबाणी सुखन साहब संपूर्ण पाठ श्रम की तेरे परम संध्या समा जान के सोदार रहरा साहब के पाठ श्रम किए हैं। अरदास जी साहब प्रेम पटन मारे बख्शे पितर को नामे श्रम किए ने। शासक जी जस पासवा गुरु साहब ने आप गुरमुखात बख्शिश किया है और शासक जी चाहे की कीर्तन आरंभ हो रहे हैं। ये सब पहले कीर्तन कारण के पश्चिम नाथ जैसा गुरदासपुर आ जाता ठीक 7 बजे तक भाई साहब आदि कीर्तन आप संकत बारह चैनल जोड़ने वास्ते महान प्रयाला करेंगे। 7 तो 7:45 तक कथा होगी। 7:30 तक कीर्तन करेंगे भाई सुरजीत सिंह जी असी जी का जत्था। सुशांत सिंह तक बेनती है ठीक 8:30 तक महाराज निकी वनंद मान दिया सात संघ जी तुम जरूर महाराज निकी कोठी बैठी अच्छे चावान के सारे कथे करने की पालता करो। और गरीब नवाज जी सतसंग जी आप संकत बेनती है तुम देख रहे हो कि जो नार्थ हाल साउथ हाल डबल बिल्डिंगा बन रही ने उस बेअंत खर्चा हो रहा। तो आप संकत जी मेहरबानी है कि बेअंत परिवार वालों बेअंत माया सो इस मुख रखते हुए दसवंत सफल करते हैं। संकत ने माया पेटा की है सात संघ जी बटभागी हैं। बाकी जिन्होंने संकत ने अजे माया पेटा नहीं की सारे ने बेनती है कि जरूर सात संघ जी तुम अपनी कमाई सफल करते हैं गुरु का जरूर बेअंत माया पेटा करके ये जो कार्य चल रहे हैं इन्होंने सारे मिलकर इन्होंने सफलता शायद संपूर्ण करिए गुरु की खुशियां प्राप्त करिए। सात संघ जी आप संकत ने बेनती है जो लड़ीवार सहज पाठ तुम हर रोज सर्व कर रहे हो ये बेअंत प्रोग्राम वो करन जाके लड़ीवार सहज पाठ नाल हो रहे हैं। उन्हें सारे बेनती है कि आपो अपने नंबर जरूर भाई अर्जन सिंह जी उन्होंने दे के उन्हें सारा जो प्रोग्राम है साझा करो ताकि आने वाले समय जी समय समय सिर जो भी प्रोग्राम हो भाई अर्जन सिंह जी आप फोन करके सारे सूचित करेंगे कि इस तरीक इस तरह है जहाँ जो भी प्रोग्राम है तुम्हें सूचित कराया करेंगे। इस वास्ते अपने नंबर भाई अर्जन सिंह दे दौ उन्होंने नंबर है 4087124145। तो आप सत्संग जी संगत बेनती है कि खालसा स्कूल का जो एडमिशन है वो चल रहा है ये सारे संगत बेनती है जरूर अपने बच्चों खालसा दाखिल कराओ बच्चों पंजाबी पढ़ाओ उस गुरबाणी सीखे गुरसिखी जुड़े रहेंगे। तो सत्संग जी सा गुरसिखा का भला इसे गल बैठिए साढ़े सारे बच्चे जो पंजाबी भी पढ़ गुरसिखी जुड़ के रहन। तो सत्संग संगत ने बेनती है कि 27 अगस्त है जन्मदिन प्यारे भाई दया सिंह जी का अपने हाजिया भरनिया ने उसके बाद सत्संग जी 23 है संपूर्ण दास साहब ग्रंथ सच्चे पातशाह जी की जो गुरु साहब ने सानू एक महान देन दी है जो साडे जीवन का एक हिस्सा बनया गुरु ग्रंथ साहब जी ने जो संपूर्णता हुई है वो 30 अगस्त हाजिया पर गुरी मछी का धन्यवाद करिए। सत संग जी 11 सितंबर तो लैके 13 तक 31 लाख का कीर्तन दरबार हो रहा गुरु का साहब जी सारी संगत ने बेनती है जरूर 10, 11, 12, 13 तीन दिन हाजियां भर के गुरु की खुशियां प्राप्त करो। सत्संग जी 12 सितंबर नु है पहला प्रकाश सतगुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी का आ सकते हैं हाजियां भर के गुरु साहब के पहले प्रकाश से गुरु साहब के प्रकाश के दिया कहते हुए सकते हैं हाजियां भर के खुशियां प्राप्त करनी ने गुरु की आशीषा लैनिया ने। और सत्संग जी पातशाह तैयार बेनती करेंगे कि धर्म करो शरण करिए। वाहेगुरु जी का खालसा।

अपने पाने बहुता बुल है, बुलिया थाई न पाई। खसम वड्डा दातार है, जो इच्छे सो फल पाए। बाबीहा क्या बपुड़ा, जगत की तिख जाए। महल्ला तीजा, बाबीहा पिन्नी रैन बुलिया। सहजे सच सुभाए, एहो जल मेरा जीव है। जल बिन रहन न जाए, गुर शब्दी जल पाई है। विच्चो

तुद सिरजी तुदै गोई लख चौरासी मेदनी तुझ ही ते होई एक राजे खान मलूक कह है कहावह कोई एक

सबना सिर सोई विणना वै बाजारिया पिहावल होई कूड़ निखुट्टे नानका सच करे सो होई।

सच करे सो होई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानियो साहिब सतगुरु गुरु गरीब नवाज, धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पाक पवित्र बारगाह दे अंदर सुभायमान गुरु रूप साध संगत जी, आप तंता योग हो जो गुरु तरस सदका सत संगति रूप विच प्यार श्रद्धा भावना सहित जुड़ बैठे हो। अमृतमई बाणी दा कीर्तन भाई साहब भाई सतनाम सिंह जी गुरदासपुर वाले तिना पासों आप जी ने सरवण किया है। आओ समा होया है अमृत बाणी दी कथा दा। मलारकी वार विच्चों अज बारहवीं पौड़ी अते उस दे नाल तीसरे गुरदेव जी दे दर्ज किते हुए दो शलोक आप जी ने पाठ रूप विच सरवण किया है। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी अमृत पौड़ी है। शलोक तीसरे गुरदेव जी दे हन, प्रकरण पिछला ही चल रहा है कि जीव एक बबीहे दी न्याई है। ये पुकारा प्या करता है कि कदों मेरी तिख मिटे, प्यास मिटे, कदों उसका बोलिया थाए पए। अज गुरु साहब सच्चे पातशाह इस जीव रूपी बबीहे नू किसी होर जुगत राही समझा रहे ने कि तेरा अपना बोलिया कदी भी थाए नहीं पै सकता, भावें तू जिन्ना मर्जी उची उची पुकारी जाए, कूकी जाए, क्योंकि तेरी पुकार विच भी तेरी मैं है कि मैं पुकार रहा हां, मैं बोल रहा हां। तू अरदास कर, अरदास राही ही उदा दर दिसना है, उदा घर दिसना है। अरदास राही ही वह बूंद टपकनी है जिसने तेरी तिख मिटाउनी है। जिस दिन तू ओदे भाणे विच उदी रजा विच मैं नू मिटा करके पिनी रहन बोलेगा, वह अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा तेरे ते त्रुट पाएगा, तेरे ते कृपा करेगा, गुरु शब्द द्वारा तेरी तिख मिट जाएगी। वह अकाल पुरख बड़ा दयालु है। पौड़ी विच फिर दस्या भी उन्हें ये सारे खंड ब्रह्मांड सिरजे ने, तू तो एक निक्का जा जीव है, तेरी तिख क्यों ना मिटाएगा। उन्हें ते राजे महाराजे शाह चक चौधरी थाप दिते ने, भिखारी राजे मंगते थाप दिते ने, तू भी उस अकाल पुरख की एक किरत है। अब बिहा उस प्रभु की याद विच प्रेम विच उन्हों पुकार, अरदास कर। जिस दिन तेरी अरदास सुनी गई तू परमात्मा दे घर प्रवान हो जाएगा। गुरु कृपा करे आप इन्हां पावन शलोकां दा अते पावन पौड़ी दी आपां विचार करनी है। आओ विचार तो पहला रसना नूं पवित्र करिए। रसना दी पवित्रता वास्ते उच्चारण करो जी।

सुनहार सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की

बोला जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरक गुरु नानक लई त्याए फिर अंगत गुरते अमरदास रामदास होय सहाय अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए तेक बहादुर सिमरिय करनो ने दावे ताए। सब थाए होना सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाए होना सहाय दसा पातशाह की जो धन धन साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दर्शन दीदार का ध्यान करके बोलना जी वाह। धन धन श्री गुरु नानक देव गोबिंद रूप सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जुगा जुग अटल नाम वाणी के बोहित कल युग के जहाज शब्द अवतार कृपालु पिताजी आप जहाँ के चरण कमला पास अरदास बेंती जोदड़ी आप जहाँ का कोटान कोट शुक्र लख लख धनवाद अमृत वेले तो लैके इस वेले तक आप जहाँ ने अपने पवित्र पावन खुले दर्शन दीदारे बख्श के समूह संतानों ने निहाल किया है। इस वेले आप जहाँ के हजूर कीर्तन सोहले साहब जी के पाठ से सुखासन की सेवा हुई बाणी का पाठ करद्या सुखासन की सेवा करद्या अनेक ही प्रकार दी पुनः गलतियां हो गई होंगी अनजान बच्चे समझ के बख्श लो अगो वास्ते शुद्ध से स्पष्ट बाणी पढ़न की शुद्ध सेवा करन की मत बख्शी। आप जाने भाणे अंदर चार पैर दिन सुख नाल उतीत है चार पैर रहना आई सुख नाल उतीत करा अमृत वेले का जागना बख्शना नितनेम दियां दातां बख्शनियां आप जाने पावन सुखासन साहब तैयार हैं। आप जी अपने आसन से विश्राम करो समूह संतानू छुट्टियां बख्शो अखरवाद घाट पड़िया पुलचुक माफ करना सब देखा अरदास करने सही संत प्यारे मेलने जिन्हें मिले तेरा नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले

ना आवै कांखी एकै दरस तुहारो नानक उन संग मोहे उधारो सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन बिश्राम रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै प्रभ कै सिमरन अन दीन जागै प्रभ कै सिमरन भउ ना व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख ना संतापै प्रभ कै सिमरन साध कै संग सर्ब निधान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निद प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ इसनानी प्रभ कै सिमरन दरगाह मानी प्रभ कै सिमरन होए सो भला प्रभ कै सिमरन सुफल फला से सिमर है जिन आप सिमराए नानक ताकै लागौ पाए प्रभ का सिमरन सब ते ऊचा प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ कै सिमरन सब किश सुझै प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूरन आसा प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माहे समाए प्रभ जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमरह से तनवंते प्रभ को सिमरह से पतवंते प्रभ को सिमरह से जन प्रवान प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरह से बेमोहताजे प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे प्रभ को सिमरह से सुखवासी प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी सिमरंते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगैर वाला प्रभ को सिमरह से पर उपकारी प्रभ को सिमरह तिन सद बलहारी प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावे प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरह तिन निर्मल रीता प्रभ को सिमरह तिन आनंद कनेरे प्रभ को सिमरह बस है हर नेरे संत किरपाते आन दिन जाग नानक सिमरन पूरै भाग प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे प्रभ कै सिमरन कबहु न चूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सहज समानी प्रभ कै सिमरन निचल आसन प्रभ कै सिमरन कमल बेगासन प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार सिमरह से जन जिन को प्रभ माया नानक तिन जन सरणी पाया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लाग बेद उपाए हर सिमरन पैसे जति दाते हर सिमरन निज चहकुंट जाते हर सिमरन तारी सब तरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन कियो सगल अकारा हर सिमरन मैं आप निरंकारा कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलोक दीन दर्द दुख पंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ अष्टपदी जह मात पिता सोत मीत न पाई मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई जय महापयान दूत जम दलै तय केवल नाम संग तेरा चलै जह मुश्किल होवै अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कूट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपहो मन मेरे नानक पावहो सुख कनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोरी बंध न परै हर का नाम जपत निस्तरै अनेक माया रंग तिख ना बुझावै हर का नाम जपत आघावै जिह मार्ग एहो जात अकेला तह हर नाम संग होत सोहेला ऐसा नाम मन सदा त्याई है नानक गुरमुख परम गत पाई है
छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तय पार पराही, अनक बिघन जय आय संघार, हर का नाम तत्काल उदार, अनेक जून जन मैं मर जाम, नाम जपत पावै बिसराम, हौ मैला मल कब हुन तोवै, हर का नाम कूट पाप खोवै, ऐसा नाम जप हौ मन रंग, नानक पाइये साधक संग, जेहे मार्ग के गने जाहे न कोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा, जेहे पैंडाए महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा, जहा पंथ तेरा को न सियानू, हर का नाम तह नाल पछानू, जह महा पयान तपत बहु काम, तह हर के नाम की तुम ऊपर शाम, जहां त्रिखा मन तुझ आकर्ष है, तह नानक हर हर अमृत बरख है, भगत जना की बरतन नाम, संत जना कै मन बिसराम, हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उधरे चन कोट, हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साधक मात, हर जन कै हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नो दान, मन तन रंग रते रंग एकै, नानक जन कै बिरत बबेकै, हर का नाम जन कौ मुकत जुगत, हर कै नाम जन कौ त्रिपत भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परै ना पहंग, हर का नाम जन की वडयाई, हर कै नाम जन सोभा पाई, हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा, हर हर जन कै मालक जीना, हर तन जन कौ आप प्रभ दीना, हर हर जन कै ऊट सताणी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते, आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की भगत मुकत भव करे, नानक जन संग केते तरे, पार जात ए हर को नाम, काम तिन हर हर गुण गाम, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा, नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुरत सब नसै, संत का संग वड भागी पाईऐ, संत की सेवा नाम ते आईऐ, नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए, सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल, पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल अष्टपदी, जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत वख्यान, योग अभ्यास कर्म धर्म किरिया, सकल त्याग बन मदे फिरिया, अनक प्रकार किए बहु जतना, पूर्ण दान होमे बहु रतना, शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती, नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौ खंड प्रथमे फिरै चैर जीवै, महा उदास तपीसर थीवै, अग्न माहे होमत प्राण, कनक अशव है वर भूम दान, नेवली कर्म करै बहु आसन, जैन मार्ग संयम अत साधन, निमख निमख कर शरीर कटावै, तौ पी होमै मैल न जावै, हर के नाम संसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे, मन कामना तीर्थ देहे छुटै, गर्भ गुमान ना मन ते हुटै, सोच करै दिनस अर रात, मन की मैल न तन ते जात, इस देही कौ बहु साधना करै, मन ते कबहु न बिखिया टरै, जल धोवै बहु देह अनीत, शुद्ध कहाँ होए काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उधरे पतत बहु मूच, बहुत सयाणप जमका भौ व्यापै, अनिक जतन कर तृष्ण ना त्रापै, भेख अनेक अग्न नहीं बुझै, कूट उपाव दरगै नहीं सिजै, छूट सनाही ऊब पयाल, मोहे व्यापै माया जाल, अवर करतूत सगली जम डानै, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सहज सुभाए, चार पदार्थ जे को मंगै, साध जना की सेवा लागै, जे को अपना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय साध गावै, जे को अपनी शोभा लोरै, साध संग ए होमै शोरै, जे को जन्म मरण ते डरै, साध जना की सरणी परै, जिस जन कौ प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा, सगल पुरख मैं पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटै अभिमान, आपस कौजू जाने नीचा, सो गनिय सब ते ऊंचा,
ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਕੀਰੀਨਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਨ ਘਟ ਘਟ ਚੀਨਾ, ਮਨ ਆਪੂਨੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ, ਪੇਖੈ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜਨਾ, ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਨ ਸਮਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ, ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਲੇਪਾ, ਨਿਰਤਨ ਕਉ ਧਨ ਤੇਰੂ ਨਾਉ, ਨਿਥਾਵੇ ਕਉ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਥਾਉ, ਨਿਮਾਨੇ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੂ ਮਾਨ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਉ ਦੇਵਉ ਦਾਨ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਆਪਣੇ ਗਤ ਮਿਤ ਜਨ ਹੁ ਆਪੇ, ਆਪਨ ਸੰਗ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ, ਤੁਮਰੀ ਉਸਤਤ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣ ਸਕੋਏ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰਿਆ, ਸਗਲ ਉਦਮ ਮੈਂ ਉਦਮ ਭਲਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪ ਹਉ ਜੀ ਸਦਾ, ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਹਰ ਕੋ ਜਸ ਸੁਨ ਰਸਨ ਬਖਾਨੀ, ਸਗਲ ਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਉਤਮ ਥਾਨ, ਨਾਨਕ ਜਿਹ ਘਟ ਵਸੈ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਲੋਕ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਅਨਿਆ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ, ਜਿਨ ਕੀਆ ਤੇ ਸਚੀਤ ਰੱਖ, ਨਾਨਕ ਨਿਭਹਿ ਨਾਲ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪਰਾਨੀ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਉਬਾਰਿਆ, ਬਾਰ ਬਵਸਥਾ ਤੁਜੈ ਪਿਆਰਾ ਦੂਧ, ਭਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ, ਬਿਰਦ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਖ ਸੈਨ, ਮੁਖ ਅਪਿਆਉ ਬੈਠ ਕਉ ਦੈਨ, ਇਹੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨ ਬੂਜੈ, ਬਖਸ਼ ਲੇਹੋ ਤਉ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਰ ਉਪਰ ਸੁਖ ਬਸੈ, ਸੋਤ ਭਰਾਤ ਮੀਤ ਬਨਤਾ ਸੰਗ ਹਸੈ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੈ ਸੀਤਲ ਜਲਾ, ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਭਾਵੁਕ ਅਮੁੱਲਾ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੈ ਸਭ ਰਸਾ, ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਥ ਬਸਾ, ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ, ਤਿਸੈ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਗ ਰਚਨਾ, ਐਸੇ ਦੁਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਬਿਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ, ਆਦ ਅੰਤ ਜੋ ਰੱਖਨ ਹਾਰ, ਤੇ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਕਰੈ ਗਵਾਰ, ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਵੈ, ਤਾਂ ਸਿਉ ਮੂੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਵੈ, ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਸਦ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ, ਤਾਕੋ ਅੰਧਾ ਜਾਨਤ ਦੂਰੇ, ਜਾ ਕੀ ਟਹਿਲ ਪਾਵੈ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ, ਤੇ ਸਹਿ ਬਿਸਾਰੈ ਮੁਗਦ ਅਜਾਨ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਹ ਭੂਲਨ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਅਪਾਰ, ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੈ, ਸਾਚ ਛੋਡ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੈ, ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਥਿਰ ਕਰਮਾਨੈ, ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਨੈ, ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੈ, ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤੇ ਸੁਪਰ ਹਰੈ, ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਉਤਾਰੈ ਧੋਏ, ਗਰ ਤਬ ਪ੍ਰੀਤ ਭਸਮ ਸੰਗ ਹੋਏ, ਅੰਧਕੂਪ ਮੈਂ ਪਤਿਤ ਬਿਕਰਾਲ, ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲੇਹੋ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆਲ, ਕਰਤੂਤ ਪਸੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ, ਛਪਛ ਨਾਹੀਂ ਕਛ ਕਰੈ ਛੁਪਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸਨਾਨ, ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੈ ਲੋਭ ਸੁਆਨ, ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸੁਆ, ਗਲ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੈ ਅਥਾ, ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਤ, ਸੁਨ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ, ਕਰ ਗਹਿ ਲੇਹੋ ਓੜ ਨਿਭਾਵੈ, ਕਹਾ ਬੁਝਾਰਤ ਬੂਝੈ ਡੋਰਾ, ਨਿਸ ਕਹੀਐ ਤਾਉ ਸਮਝੈ ਭੋਰਾ, ਕਹਾ ਬਿਸਨ ਪਦ ਗਾਵੈ ਗੂੰਗ, ਯਤਨ ਕਰੈ ਤਉ ਪੀ ਸੂਰ ਭੰਗ, ਕਹਿ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ, ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਊਹਾਂ ਉਸ ਗਵਨ, ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ, ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੈ, ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸੋ ਆਵੈ ਨ ਚੀਤ, ਜੋ ਬੈ ਰਾਈ ਤਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ, ਬਲੂਆ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਬਸੈ, ਆਨੰਦ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਮਾਨੈ ਮਨ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਕਾਲ ਨ ਆਵੈ ਮੂੜੇ ਚੀਤ, ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ, ਝੂਠ ਬਿਕਾਰ ਮਹਾਂ ਲੋਭ ਤ੍ਰੋਹ, ਪਿਆਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ, ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲੇ ਹੋ ਆਪਨ ਕਰ ਕਰਮ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ, ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਤਹਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸਲੋਕ ਦੇਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੈ, ਲਾਗੈ ਆਨ ਸੁਆਏ, ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨ ਸੀ ਜਈ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪਤ ਜਾਏ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਦਸ ਵਸਤੂ ਲੇ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ, ਏਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਬਿਖੋਟ ਗਵਾਵੈ, ਏਕ ਭੀ ਨ ਦੇ ਦਸ ਧੀ ਹੈਰ ਲੇ, ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਹਾ ਕਰੇ,
जिस ठाकुर से उनाही चारा ताको की जय साध नमस्कारा जा कै मन लागा प्रभ मीठा सर्ब सुख ताहु मन बूठा जिस जान अपना हुक्म मनाया सर्ब थोक नानक तिन पाया अगनत साहो अपनी देरास खात पीत बरत आनंद उलास अपनी अमान काश बाहुर साहुले अज्ञानी मान रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवै बाहुर सुखा विश्वास न होवै जिसकी बस्त तिस आगै राखै प्रभ की आज्ञा मन माथै उसदे चौ गुण करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनेक भांत माया के हेत सर पर होवत जान अनेत बिरख की छाया स्यों रंग लावै ओ बिनसै ओ मन पछोतावै जो दिसै सो चलन हार लपट रहे तह अंध अंधार बटाऊ स्यों जो लावै नेह ताकौ हाथ न आवै केहे मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लय लाई मिथ्या तान धन कुटुंब सुबाया मिथ्या होमै ममता माया मिथ्या राज जोबन धन माल मिथ्या काम क्रोध बिकराल मिथ्या रथ हस्ती असब बस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान अस्थिर भगत साध की सरन नानक जाप जाप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनै मिथ्या हस्त पर दर्ब कोहिरै मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को तावै मिथ्या मन पर लोभ लुभावै मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बिकारा बिन बूझे मिथ्या सब पहे सफल देह नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की अर्जा साच बिना कह होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ताके दुर्गंध बिन सिमरण दिन रैन बिरथा बिहाय मेघ बिना ज्यो खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यो किरपन के नरारत दाम धन धन ते जन जिह घट बस्यो हर नाउ नानक ताकै बल बल जाओ रहत अवर काश अवर कुमावत मन नहीं प्रीत मुख हूँ गांड लावत जनन हार प्रभु प्रवीन बाहर भेख न काहू पहीन अवर उपदेसै आप न करै आवत जावत जनमै मरै जिसके अंतर बसै निरंकार तिस की सीख तरै संसार जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नानक ऊन जान चरण पराता करौ बेनती पार ब्रह्म सब जानै अपना किया आपे ही मानै आपे ही आप करत नबेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा उपाव स्यानप सगल ते रहत सब कछ जानै आत्म की रहत जिस पावै तिस लय लड़ लाए हां।

ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੂ ਧਨ ਪਾਵੈ ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੂ ਬਾਸੁਰ ਦੇਵਾ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਾਸ਼ ਕਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋ ਤਿਨੇ ਹਾਲ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕਲੂਖਤ ਹਰੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਸ਼ੁਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਦ ਬਸੈ ਨਾਨਕ ਉਧਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਮੰਤੇ ਬਿਸਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰਪਰ ਨਿਸਤਰੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਲਗੈ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਘਾਟ ਘਾਟ ਡੀਠਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭੈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੀ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਯੋਗ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਜੇਤਾ ਸੁਣੈ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਨਾ ਹੈ ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਹੋਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਾਰਪੂਰ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਊਚੀ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਣੇ ਆਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ ਸਲੋਕ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਅਵਰ ਨਾ ਭੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕੌ ਸੋਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤੁਲ ਪਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਧੀਰਜ ਏਕ ਜਿਉਂ ਬਸੁਧਾ ਕੋ ਖੋਦੈ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹ ਗੁਨਾਉ ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਉ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ ਜਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜੈਸੇ ਧਰ ਉਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਮਿੱਤਰ ਸੁਤਰ ਸਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਨਾਹੀ ਅਭਿਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ ਮਨ ਆਪੋ ਨਾਇ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਪਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਕਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀਰੀਨਾ ਆਤਮ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਉਪਰ ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਛੁ ਬੁਰਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਯੁਗਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਉਪਰ ਆਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰੋ ਮਾਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਨਾਹੀ ਧੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੈ ਧਾਵਤ ਬੰਧਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੋ ਫਲ ਫਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗ ਸਗਲ ਉਧਾਰ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਪੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਕਹਿ ਰੰਗ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਨਾਮ ਪਰਵਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਤਿਆਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਮਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਘਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਸੰਗ ਹੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਦਰਸ ਬਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਉ ਖੋਜੈ ਮਹੇਸੁਰ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾਹੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾਹੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਸਗਲ ਮਨ ਮਾਹੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਭੇਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕਥਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਅਦੇ ਅੱਖਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਠਾਕੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਮਿਤ ਕੌਣ ਬਖਾਨੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਭ ਉਪਰ ਹਾਥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲ ਆਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੀ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਧਨੀ ਸਲੋਕ ਉਰ ਧਾਰੈ ਜੋ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਸਰਬ ਮੈਂ ਭੇਖੈ ਭਗਵਾਨ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਠਾਕੁਰ ਨਮਸਕਾਰੈ ਨਾਨਕ ਉਹ ਅਪਰਸ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰੈ
अष्टपदी मिथ्या नाही रसना पारस मन में प्रीत निरंजन दारस पर त्रय रूप ना पेखा नेत्र साध की टहल संत संग हेत करन ना सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद बिखिया पर हरे मन की बाशना मन ते टरे इंद्री जित पंच दुख ते रहत नानक कूट मधे को ऐसा अपरस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न बिसन की माया ते हुए भिन्न कर्म करत हुए निहे कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा ने बछ केवल भगत कीर्तन संग रच मान तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरा नाम जपावे नानक ओ वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिनसाय सगला परम कर पूजय सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मालक होवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नेत नीत मन तन अर्पय बिसन परीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रबोधय राम नाम आत्म में सोदय राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जोन न आवै वेद पुराण सिमरत बूजै मूल सूखम मै जानै असथूल चहुवरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चहुवरना मै जपै को नाम ज्यो ज्यो जपै तिस की गत होए साध संग पावै जन कोए कर कृपा अंतर उर तहारै पास प्रेत मुगद पात्र को तारै सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत कित न पाइये धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया धुर कर्म जिस कै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नगरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दुर्गय परवान अपने दास को आप कृपा करै तिस दास काओ सब सोजी परै सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुक्त सो कहावै तैसा हरख तैसा उस सोग सदा आनंद तह नहीं बेयोग तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बेख काटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित घर राखै तैसा तिन नाओ आपे करन करावण जोग प्रभ भावै सोई फुन होग पसरेओ आप होए आनत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता विनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पए निहाल श्लोक पुस्तत करे अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रब रची बहुविध अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट बन भ्रमै उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान तहरै कई कोट कब काप विचारै कई कोट नवतन नाम तिहावै नानक करते का अंत न पावै कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट किरपन कठोर कई कोट अभेग आत्म निकोर कई कोट पर दर्ब को हिरै कई कोट पर दुख न करै कई कोट माया श्रम माहे कई कोट परदेश परमाहे जित जित लाव हो तित तित लगना नानक करते की जानै करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रास भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाए कई कोट पाथर बिरख निप जाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट ससियर सूर नखियत्र कई कोट देवदानव इंद्र सिर शत्र सकल समग्री अपने सूत तहारै नानक जिस जिस पावै तिस तिस ने सतारै कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद पुराण सिमरत अर शास्त कई कोट किए रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चैर जीवे कई कोट गिरी मेर सुवरन थीवे
ਕਈ ਕੋਟ ਜਖਿਆ ਕਿਨਰ ਪਿਸਾਚ, ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ, ਸਭ ਤੇ ਨੇਰਾ ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਦੂਰ, ਆਪ ਨਾਨਕ ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮੈ ਜੀਵੈ ਮਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਬੋਜੋਨੀ ਫਿਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੈ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਧਨਵੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚਿੰਤ। ਜਹਿ ਜਹਿ ਭਾਣਾ ਤਹਿ ਤਹਿ ਰਾਖੇ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛੁ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਏ ਬੈਰਾਗੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਖੋਜੰਤੇ, ਆਤਮ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ, ਤਿਨ ਕਉ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸ਼, ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗੈ ਸਾਥ ਸੰਗ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ, ਜਿਨ ਕਉ ਹੋਏ ਆਪ ਸੁ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ, ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰ ਖੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ, ਕਈ ਜੁਗਤ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰ, ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਏਕ ਏਕੰਕਾਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ, ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਤ, ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ, ਤਿਨ ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਕਈ ਕੋਟ ਤੱਤ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸਦਾ ਨਿਹਾਰੈ ਏਕੂ ਨੇਤਰੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਪਏ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਆਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ, ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋਲ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੁਮਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਲੋਕ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰਨ ਜਲ ਸਲ ਮਹੀਅਲ ਸੋਏ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਕਰਨੇ ਜੋਗ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ, ਥਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪੂ ਥਾਪਨ ਹਾਰਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ, ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਆਧਾਰ ਰਹਾਵੈ, ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ, ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ, ਹੁਕਮੇ ਅਨਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਨੁੱਖ ਗਤ ਪਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਸਰ ਤਰਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸਤੇ ਰੱਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤਤ ਉਧਾਰੈ, ਆਪ ਕਰੇ ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੈ, ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਖੇਲੈ ਬਿਗਸੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਕਹੋ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ, ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਡੇ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ, ਅਨਜਾਨਤ ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚੈ, ਜੇ ਜਾਣਤ ਆਪਨ ਆਪ ਬਚੈ, ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦਹਿ ਤਿਸ ਤਹਾਵੈ, ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਫਿਰ ਆਵੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਜਾ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੈ, ਤਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦੈ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ, ਜਾ ਕਉ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸੀਸ, ਤਾ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨ ਗਣੈ ਜਗਦੀਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ, ਘਾਟ ਘਾਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਨਾਈ, ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਵਡਾਈ, ਇਸਕਾ ਬਲ ਨਾਹੀ ਇਸ ਹਾਥ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪੁਰਾ ਜੀਓ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਥੀਓ, ਕਬਹੂੰ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੈ, ਕਬਹੂੰ ਸੋਗ ਹਰਖ ਰੰਗ ਹਸੈ, ਕਬਹੂੰ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ, ਕਬਹੂੰ ਊਬ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ, ਕਬਹੂੰ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਕਬਹੂੰ ਨਿਰਤ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਤ, ਕਬਹੂੰ ਸੋਏ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਬਹੂੰ ਮਹਾਂਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ, ਕਬਹੂੰ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋ ਤਰਵਾਲ, ਕਬਹੂੰ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬਡ ਰਾਜਾ, ਕਬਹੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ, ਕਬਹੂੰ ਆਪ ਕੀਰਤ ਮੈਂ ਆਵੈ, ਕਬਹੂੰ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ, ਜਿਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਵਹੀ ਰਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕਹੈ, ਕਬਹੂੰ ਹੋਏ ਪੰਡਤ ਕਰੇ ਬਖਿਆਨ, ਕਬਹੂੰ ਮੋਨ ਤਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨ, ਕਬਹੂੰ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨ, ਕਬਹੂੰ ਸਿੱਧ ਸਾਧਿਕ ਮੁਖ ਗਿਆਨ, ਕਬਹੂੰ ਕੀਟ ਹਸਤ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਜੀਆ, ਅਨੇਕ ਜੋਨ ਭਰਮੈ ਭਰਮੀਆ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜਿਉਂ ਸਵਾਂਗੀ ਦਿਖਾਵੈ, ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਚਾਵੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਏ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਆਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਕਬਹੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਏ ਪਾਵੈ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਆਵੈ,
अंतर हुए ज्ञान प्रकाश, उस अस्थान का नहीं विनाश। मन तन नाम रते एक रंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सतगुरु बान सलोक। सुखी बसै मसकीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया। नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसके अंतर राज अभिमान। सो नरक पाती होवत सुवान, जो जाने मैं यौवनवंत। सो होवत विष्टाका जंत, आपस को कर्मवंत। कहावै जन्म मरै बहु जोन परमावै, धन भूमिका जो करै गुमान। सो मूरख अंधा ज्ञान, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै। नानक इहां मुकत आगै सुख पावै, धनवंता होए कार गर्भावै। तृण समान काश संग न जावै, बहु लस्कर मानुख ऊपर करे आस। पल पीतर तांका होए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत। खिनमै होए जाए पसमंत, किसे न बदै आप अहंकारी। धर्म राय किस करे खुआरी, गुरप्रसाद जाका मिटै अभिमान। सो जन नानक दरगह परवान, कूट कर्म करे हों तारे। श्रम पावै सगले बिरथारे, अनक तपस्या करे अहंकार। नरक सुरग फिर अवतार, अनक जतन कर आत्म निंद्रवै। हर दरगह कहो कैसे गावै, आप सकाओ जो भला कहावै। तिसे भलाई निकट न आवै, सर्ब किरेन जाका मन होए। कहो नानक ताकि निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते काश होए। तब इसको सुख नाही कोए, जब ए जाने मैं किश करता। तब लग गर्भ जोन मह फिरता, जब तारै को बैरी मीत। तब लग नहीं चलना ही चीत, जब लग मोह मगन संग माए। तब लग धर्म राय दे सजाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटै। गुर प्रसाद नानक हों छूटै, सहस खटे लख कौ उठतावै। त्रिपत न आवै माया पाछै पावै, अनेक भोग बिख्या के करै। नह त्रिपतावै खाप खाप मरै, बिना संतोख नहीं को राजै। सुपन मनोरथ वृथि सब का जय, नाम रंग सर्व सुख होए। बड़भागी किसे प्राप्त होए, करण करावन कापे आप। सदा सदा नानक हर जाप, करण करावन करणे हार। इसके हाथ कहा बिचार, जैसी दृष्ट करे तैसा होए। आपे आप प्रभ सोए, जो केश तीनों सो अपने रंग। सब ते दूर सब हूँ कै संग, बूझ देखा करै बबेक। आपे एक आपे अनेक, मरै न बिन सय आवै न जाए। नानक साध ही रहया समाए, आप उपदेश समझै आप। आपे रचया सब कै साथ, आप कीनो अपन बिसथार। सब काश उसका ओ करने हार, उसते भिन्न कहो किश होए। थान थनंतर एक सोए, अपने चाले तो आप करने हार। कौतक करे रंग अपार, मन मह आप मन अपने माहे। नानक कीमत कह न जाए, सत सत सत प्रभ स्वामी। गुर प्रसाद किने वख्यानी, सच सच सच सब कीना। कूट मधे किने बिरलै चीना, भला भला भला तेरा रूप। अत सुंदर अपार अनूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी। घट घट सुनी श्रवण बख्याणी, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत। नाम जपै नानक मान प्रीत, सलोक संत सरन। जो जन परै सो जन उधरण हार, संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। अष्टपदी, संत कै दुखन आर जा कटै। संत कै दुखन जमते नहीं छुटाए, संत कै दुखन सुख सब जाए। संत कै दुखन नरक में पाए, संत कै दुखन मत होए मलीन। संत कै दुखन सुबा ते हीन, संत के हते कौ रखै न कोए। संत कै दुखन थान प्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करै। नानक संत संग निंदक भी तरै, संत के दुखन ते मुख पवै। संतन कै दुखन काग ज्यों लवै, संतन कै दुखन सर्प जोन पाए। संत कै दुखन त्रिगद जोन किरमाए, संतन कै दुखन तृष्णा मै जलै। संत कै दुखन सब को शलै, संत कै दुखन तेज सब जाए। संत कै दुखन नीच नीचाए, संत दुखी का थाओ को नाहे। नानक संत पावै ता ओए भी दत पाहे। संत का निंदक महाताई, संत का निंदक खिन टिकन न पाई। संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा।
संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखियार दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दुख मैं दुख, नानक संत पावे ता उसका पी होए मोख, संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा बिकारी, संत का दुखी जन्मै मरै, संत की दुख ना सुख ते टरै, संत के दुखी को नाही ठाऊ, नानक संत पावे तां लए मिलाए, संत का दुखी अद बीच ते टूटै, संत का दुखी कतै काज ना पहुँचै, संत के दुखी को उद्यान परमाहियै, संत का दुखी उजड़ पाईऐ, संत का दुखी अंतर ते थोथा, ज्यों सास बिना मृत कीलो सा, संत के दुखी की जड़ किश नाहे, अपन बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी को अवर न रखन हार, नानक संत पावे तां लए उबार, संत का दुखी, संत का दुखी इयों बिल लाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजा, ज्यों पावक ईधन नहीं त्रापै, संत का दुखी छुटे केला, जो बुआड़ तेल खेत माही दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो तिस भावे सोई थिया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है, संत के दुखी की पूजे नासा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत के दुख न त्रिष्टै कोए, जैसा पावे तैसा कोई होए, पया किरत न मिटै कोए, नानक जाने सच्चा सोए, सब कहट तिसके ओह करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभ की उसद करो दिन रात, तिसे त्यावह सास विरास, सब काश वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनु कृपा करै तिस आपन नाम दे, बड़भागी नानक जन से सलोक, तज हो सियानप सुरज न हो, सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखाओ, नानक दुख परम पहु जाए, अष्टपदी मानुख की टेक वृथि, सब जान देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रहे अघाए, बहुर न तृष्णा लग गयाए, मारे रखे को आप, मानुख कह किश नाही हाथ, किसका हुक्म बूझ सुख होए, किसका नाम रख कंठ पुरोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागे कोए, उस्तत मन मैं कर निरंकार, कर मन मेरे साथ व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लह जियो, नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन सह सब संग, चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटै पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक ऊजल मथा, बड़भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करे विचार, से तनवंत गनी संसार, मान तन मुख बोलै हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाने, एतो तकियो सो जी जाने, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिन्ह निरंजन जानिया, गुरप्रसाद आपन आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग देव हर जन रहत, आन दिन कीर्तन केवल बखियान, ग्रस्त मैं सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटिया जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मान भूख, नानक तिसै न लागै दुख, जिस को हर प्रभ मन चित आवै, सो संत सुहेला नहीं डुलावै, जिस प्रभ अपना कृपा करै, सो सेवक कहो किस ते डरै, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुरु प्रसाद तत सब बूजिया, जब देखाओ तब सब केश मूल, नानक सो सूखम सोई असथूल, नह किश जन्मै नह किश मरै, आपन चले तो आप ही करै, आवन जावन दृष्ट आन दृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट, आपे आप सगल मह आप, अनेक जुगत राच थाप थाप, अभिनाशी नाही केश खंड, धारण तार रहो ब्रह्मंड, अलख अपेव पुरख प्रताप, आप जपाए ता नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो सुबावंत, सगल संसार उदरै तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख बिसारण,
ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਕਿਰਪਾਲ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਪਏ ਨਿਹਾਲ, ਉਨਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬਡ ਭਾਗੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਬਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖ ਕਉ ਉਤਮ ਕਰਮਾਨ, ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਰੰਗ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸਾਏ ਹਰ ਸੰਗ, ਸਹ ਸੁਭਾਏ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ, ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਪਛਾਣੈ ਸੋਏ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ, ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ, ਓਏ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਨਹੂ ਬਨ ਆਏ, ਆਪਸ ਕੋ ਆਪ ਦੀਨੋ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਏਕੋ ਜਾਨ, ਸਲੋਕ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ, ਬਿਰਥਾ ਜਨ ਨਹਾਰ, ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੀਐ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਟੂਟੀ ਗਾਂਢਣ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ, ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ, ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਤੇਰਾ ਏ ਕਿਛੁ ਕਾਮ, ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਪ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ, ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਮੋਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋ ਹੈ, ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬੈ, ਜਾਂ ਸਭ ਕਿਛੁ ਤਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬੈ, ਅਤ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿਤਾਵੈ, ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਾਹੇ ਦਾਤਾਰ, ਤਿਸ ਦਿਨ ਹਰ ਜਾਣੇ ਗਾਵਾਰ, ਜਿਸ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਟੁੱਟੇ ਹਉ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸਦਾ ਆਰੋਗ, ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕਉ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨ, ਤਿਉਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥੰਮਨ, ਜਿਉ ਪਾਖਾਣ ਨਾਵ ਚੜਤਰੈ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸਤਰੈ, ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਗੁਰ ਦਰਸਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ, ਜਿਉ ਮਹਾਂ ਉਦਿਆਨ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ, ਤਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ, ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਸ਼ਉ ਧੂਰ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ, ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ, ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂੰ ਤਿਸੈ ਚਿਤਾਰ, ਜੋ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨ, ਭੂਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੇ ਅਜਾਨ, ਕੌਣ ਬਸਤ ਆਈ ਤੇਰੇ ਸੰਗ, ਲਪਟ ਰਹਿਓ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਜਿਸ ਵਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮੋਲ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਲ, ਲਾਦ ਖੇਪ ਸੰਤੈ ਸੰਗਚਾਲ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਵਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ, ਧਨ ਧਨ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਮੁਖ ਊਜਲ ਹਰ ਦਰਗੈ ਸੋਏ, ਇਹੋ ਵਾਪਾਰ ਵਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਸਦ ਬਲਹਾਰੈ, ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ, ਅਰਪ ਸਾਧ ਕਹੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ, ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸਨਾਨ, ਸਾਧ ਉਪਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ, ਸਾਧ ਸਿਵਾ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ, ਅਨਕ ਬਿਘਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰੱਖੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚੱਖੈ, ਓਟ ਗਹੀ ਸੰਤੈ ਦਰ ਆਇਆ, ਸਰਬ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਤੇਹ ਪਾਇਆ, ਮਿਰਤਕ ਕੌ ਜੀ ਵਾਲਨ ਹਾਰ, ਭੂਖੇ ਕੌ ਦੇਵਤ ਆਧਾਰ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੇ, ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਹੇ, ਸਭ ਕਿਛੁ ਤਿਸ ਕਾ ਕਰਨੈ ਜੋਗ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋਗ, ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ, ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਰਨੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕਉ ਨਾਮ ਦੀਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ, ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ, ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਐ ਤੇਹ ਲੋਏ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਏਕੋ ਹੋਏ, ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਤਾ ਕੀ ਰਹਿਤ, ਸੱਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤ ਮੁਖ ਕਹਿਤ, ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ, ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਸਾਰ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ, ਸਲੋਕ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਨ ਰੰਗ ਕੇਸ਼ੋ, ਤ੍ਰੇਹੋ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ, ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖ, ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਗ, ਤਿਸਤੇ ਪਰੇ ਨਾਹੀ ਕੇਸ਼ ਕੋਏ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਆਪੇ ਬਿਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੋ ਜਾਨਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਿਆਲ ਬਖਸੰਦ, ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪਾਉ, ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਮਨ ਇਹੋ ਅਨਰਾਉ, ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਣਾ ਜੋਗ, ਜੋ ਕਰਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗ, ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਂ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ, ਤਿਸ ਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੋਰ, ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾ ਕੈ ਸਰਬ ਥੋਕ, ਸੁਣੀਐ ਘਰ ਤਾਕੈ ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜ, ਜੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ, ਤਪ ਮੈਂ ਤਪੀ, ਸਰਗ੍ਰਸਤ ਮੈਂ ਭੋਗੀ, ਧਿਆਹੇ ਧਿਆਹੇ ਭਗਤੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ, ਜਾਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀਮਿਤ ਨਾਹੀ, ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੇ, ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ, ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਆਪਣੇ ਸੂਤ, ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿਨ ਦੇ, ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਸੇ, ਤੇਹੋ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾਕੋ ਪਰਮਾਏ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ, ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸਕੇ ਅਸਥਾਨ, ਜੈਸਾ ਜਨ ਆਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ, ਨਾਨਾ ਭੇਖ ਕਰੈ ਇੱਕ ਰੰਗ,
नाना बेद कीनो बिसथार, प्रभ अभिनाशी एक ओंकार। नाना चलित करे किन माहे, पूर रहो पूरन सब ठाए। नाना बेद कर बनत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई। सब घट तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीव नानक हर नाओ। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड। नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान। नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगल आकार। नाम के तारे पुरिया सब भवन, नाम कै संग उधरे सुन श्रवण। करके भज से अपने नाम लाए, नानक चौथे पद मै सो जन गत पाए। रूप सत जाका सत अस्थान, पुरख सत केवल प्रधान। करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख सब माहे सम्माणी। सत कर्म जाकी रचना सत मूल, सत सत उत्पात। सत करणी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली। सत नाम प्रभु का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुर ते पाई। सत बचन साधु उपदेश, सत तेजन जाकै हृदय प्रवेश। सत निरत बूझै जे कोए, नाम जपत ताकी गत होए। आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मेत गत। जिसकी सृष्ट सो करने हार, अवरण बूझ करत बिचार। करते कि मेत न जाने किया, नानक जो तिस भावै सो वर्तिया। बेसम न बेसम भय बिसमाद, जिन बूझिया तिसे आया स्वाद। प्रभ कै रंग राच जन रहे, गुर कै बचन पदार्थ लहे। ओए दाते दुख घटन हार, जा कै संग तरे संसार। जन कै सेवक सो वडभागी, जन कै संग एक लेव लागी। गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै, गुर प्रसाद नानक फल पावै। श्लोक आद सच जुगाद सच, है पे सच नानक होसी पे सच। अष्टपदी चरण सत सत परसन हार, पूजा सत सत सेवदार। दर्शन सत सत पेखन हार, नाम सत सत त्यावन हार। आप सत सत सब धारी, आपे गुण कारी। शब्द सत सत प्रभ बखता, सुरत सत सत जस सुनता। बुजन हार कौ सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए। सत सरूप हृदय जिन मान्या, करण करावण तिन मूल पछान्या। जाकै हृदय विश्वास प्रभ आया, तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया। पैते निर्भउ होए प्रसन्ना, जिस ते उपजिया तिस माहे समाना। बस्त माहे ले बस्त गडाई, ताको भिन न कहना जाई। बुझे बुजन हार बबेक, नारायण मिले नानक एक। ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी। ठाकुर के सेवक है मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत। ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम कै रंग। सेवक को प्रपालन हारा, सेवक की राखे निरंकारा। सो सेवक जिस दया प्रभ तारै, नानक सो सेवक सास सास समारै। अपने जन का पर्दा ढाके, अपने सेवक की सर पर रखे। अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई। अपने सेवक की आपत रखे, ताकि गत मित कोई न लखे। प्रभ के सेवक कहो को न पहुँचे, प्रभ के सेवक ऊच ते ऊचे। जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दै दिस प्रगटाया। निकी कीरी में काल रख है, भासम करे लस्कर कोट लख है। जिसका शासन काढ़त आप, ताको रखत देकर हाथ। मानस जतन करत बहुपांत, तिसके कर्तव्य थे जात। मारे न रखे अवर न कोय, सर्व जिया का रखा सोए। काहे सोच कर है रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख विडाणी। बारं बार बार प्रभ जपी है, पी अमृत इहो मान तान त्रपी है। नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस के शवर नाही दृष्टाया। नाम धन नमो रूप रंग, नमो सुख हर नाम का संग। नाम रस जो जन त्रिपताने, मान तन नाम ही नाम समाने। उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सद काम। बोलो जस जिहबा दिन रात, प्रभ अपने जन की नीदात। करह भगत आत्म कै चाए, प्रभ अपने स्यों राह ही समाए। जो हुआ होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने।
तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कह एक न जानो। आठ पहर प्रभ सह हजूरे, कहो नानक सही जन पूरे। मन मेरे तिनकी ओटले, मन ताने अपना तिन जन दे। जिन जन अपना प्रभु प्रशाता, सो जन सर्ब थोक का दाता। तिसकी शरण सर्ब सुख पावे, तिसके दर्श सब पाप मिटावे। अवर स्याण पसगली शाड, तिस जन की तू सेवा लाग। आवण जन होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजव सद पैरा श्लोक। सत पुरख जिन जानिया, सत गुर तिसका नाओ। तिसकै संग सिख उदरै, नानक हर गुण गाओ अष्टपदी। सत गुर सिख की करै प्रतपाल, सेवक कौ गुर सदा दयाल। सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै। सत गुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख विकार पे हटै। सत गुर सिख कौ नाम तन दे, गुर का सिख वड भागी हे। सतगुर सिख का हलत पलत सवारै, नानक सतगुर सिख कहो जी नाल समारै। गुर के ग्रह सेवक जो रहै, गुर की आज्ञा मन मै सहै। आपस कहो कर कछ न जनावै, हर हर नाम हृदय सद तिहावै। मन बेचै सतगुर के पास, ते सेवक के कारज रास। सेवा करत होए निहकामी, तिस कौ होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। बीस बिसवे गुर का मन मानै, सो सेवक परमेश्वर की गत जानै। सो सतगुर जिस हृदय हर नाउ, अनक बार गुर को बल जाओ। सर्ब निधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म, एक है आप नहीं काश परम। सह सियाण पलै न जाइए, नानक ऐसा गुर बड़भागी पाइये। सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगा गवे। सुनकर बचन करण आघाने, मन संतोख आत्म पतियाने। पूरा गुर आख्या उजा का मंत्र, अमृत दृष्ट पेखय हुए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावै तिस लय मिलाए। जिह बा एक उस्तत अनेक, सत पुरख पूर्ण बबेक। काहू बोल न पहुंचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्बानी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किन न पाई। अनेक भगत बंधन नित करै, चरण कमल हृदय सिमरै। सत बलहारी सतगुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। इहो हर रस पावै जन कोय, अमृत पीवै अमर सो होए। उस पुरख का नाहीं कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुणतास। आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक कौ दे। मोह माया के संग न लेप, मन में रख हर हर एक। अंधकार दीपक प्रगासे, नानक भारम मोह दुख तह तेनासे। तप तमाहे ठांड वरताई, आनंद पहया दुख नाठे पहाई। जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे। पौ चूका निरपौ होए बसे, सगल ब्याद मन ते खै नसे। जिसका सातिन कृपा तारी, साध संग जप नाम मुरारी। थेत पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवन। निर्गुण आप सरगुण पियो ही, कला तार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर बिन दूजा नाही कोय, सर्व निरंतर एको सोय। ओत पोत रव्या रूप रंग, पै प्रगास साध कै संग। रच रचना अपनी काल तहारी, अनक बार नानक बलहारी। श्लोक साथ न चलै बिन भजन, बिख्या सगली शार। हर हर नाम कमावना, नानक एहो तन सार। अष्टपदी संत जना मिलकर हो विचार, एक सिमर नाम आधार। अवर उपाव सब मीत बिसार हो, चरण कमल रिद मैं उरतार हो। करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गाह हो नाम हर वथ। एहो तन संचाहो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत। एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार कुंट उठता वै, सो तन हर सेवा ते पावै। जिस सुख को नित बाछै मीत, सो सुख साधु संग परीत। जिस सुबा को करै भली करनी, सास सुबा पाज हर की सरनी। अनक उपावी रोग न जाए, रोग मिटै हर अवख दलाए। सर्ब निधान में हर नाम निधान, जप नानक दरगै परवान। मन प्रभु दो हर कै नाए, दैत सताव दया वै ठाए।
ताको बिघन लागै कोई जाकै हृदय बसै हर सोए कल ताती ठंडा हर नाउ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाओ बिनसै पूर्ण होए आस भगत पाए आत्म प्रगास तित कर जाए बसै अबिनासी कह नानक काटी जम फासी तत विचार कहे जन साचा जन्म मरै सो काचो काचा आवा गवन मिटै प्रभ सेव आप त्याग सरन गुरुदेव इयों रतन जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनकू पावना छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद बिचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए संग न चालस तेरा तना तू क्या लपटावै मूर्ख मना सो तमीत कुटुंब अर बनता इनते कहो तुम कवन सुनाथा राज रंग माया विसथार इनते काह हो कवन छुटकार आस हस्ती रथ असवारी झूठा डंप झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझै ना बेगाना ना बिसार नानक पशुताना गुरु की मत तू लिहे आने भगत बिना बहु डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हार रुचित चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे आप जपहो अवरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो सार भूत सत हर को नाओ सह सुबाए नानक गुण गाओ गुण गावत तेरी उतर समैल बिन सजाए होमै बिख फैल हो हे अचिंत बसै सुख नाल सास ग्रास हर नाम समाल शाड़ सियान पसगली मना साध संग पावै सच तना हर पूंजी सांच करहो व्यवहार इहां सुख दरगा जयकार सर्ब निरंतर एको देखो कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको सा लाहे एक सिमर एको मन आहे एक सके गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूरन पूर हो प्रभ्य आप अनक बिसथार एक ते पहे एक आराध प्राशत गए मन तन यंत्र एक प्रभराता गुरप्रसाद नानक एक जाता सलोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तौ सरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए अष्टपति जाचक जन जाचै प्रभदान कर कृपा देवो हर नाम साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरे श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमल सिंह लागै प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मंगै नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महान सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जन त्रिपताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सो भर परे प्रेम रस रंग उपजै चाओ साधकै संग परे सरण आन सब त्याग अंतर प्रगास आन दिन लिव लाग बड़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पही सतगुरु ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुकत जन पहया जन्म मरण दुख भ्रम गया इश पुनी सरधा सब पूरी रव रहया साध संग हजूरी जिसका सातन लिया मिलाए नानक भगती नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल ना पानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै सो क्यों बिसरै जिन सब किश दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अगन मै राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरै जे बेखते काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गांडै गुर पूरै तत एह बुझाया प्रभ अपना नानक जन तिहाया साजन संत करहो एहो काम आन त्याग जपहो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावहो आप जपहो अवरह नाम जपावहो भगत पाए करिय संसार बिन भगती तन हो सीशार सर्ब कल्याण सुख निद नाम बूढ़त जात पाए बिश्राम सगल दुख का हुवत नास नानक नाम जपहो गुण तास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर एही सुआओ नेत्रों पेख दरस सुख होए मन बिगसै साध चरण तुहे भगत जना कै मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बस्त दीजै कर मया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्ब समाए प्रभ संद दीन दयाल भगत वशल सदा कृपाल
अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आदि पुरुख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए अनक राज भोग बड़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करनी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ देहु निवास सर्व सुख नानक प्रगास सलोक सर गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानका पे ही फिर जाप अष्टपदी जब अकार एकाश नान दृष्टिता पाप पुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरक सोग कहो किसै व्यापत जब अपन आप हो आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम अपन खेल आप वरतीजा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तने तब बंद मुक्त कहो किस कहो गनी जब एक हार अगम अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब सेव सकत कहो कि तठाए जब आपे आप अपनी ज्योत तरै तब कवन निडर कवन कत डरै आपन चले तो आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अभिनाशी सुख आपन आसन तह जानम मरण कहो कहा बिनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो हो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपन आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौ मान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह शाल शेदर लगत कहो कीस जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किस है भूख कवन त्रिपतावै करन करावन करने हार नानक करते का नाहे सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सोत पाई जय सर्व कला पे प्रवीण तह वेद कतिब कहा को चीन जब अपन आप हो आप उर तारह कहो सगन आप सगन कहा विचार है जह अपन ऊच अपन आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा बेस मन बेसम रहे बिस्माद नानक अपने गत जन हो आप जह अशल अशेद अभेद समाया ऊहा किस व्यापत माया आपस को आपे आदेश तेहो गुण का नाही परवेश जह एक है एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लग चिंता जह अपन आप हो आप पतियारा तह कौन कथ है कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊच ते ऊचा नानक आपस को आपे पहुचा जह आप रचियो प्रपंच आकार तेहो गुण मैं कीनो बिसथार पाप पुन तय पई कहावत को नरक को सुर्ग बंशावत आल जाल माया जंजाल होमै मोह परम पह पार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखियान आपन खेल आप कर देखै खेल संकोचै तौ नानक एकै जह अवगत भगत तह आप जह पसरे पसार संत प्रताप दुहु पाक का आपे हितने उनकी सुबा उन्हु बनी आपे कौतुक करे आनंद जोज आपे रास भोगन निरजोग जिस भावै तिस आपन नाय लावै जिस भावै तिस खेल खिलावै बेसुमार अथा अगंत अतुलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै सलोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार अष्टपदी आप कथय आप सुनने हार आपे एक आप बिसथार जातिस पावे ता सृष्टो पाए अपने भाणे लय समाए
तुम ते भिन नहीं किश होए आपन सूत सब जगत परवे जाको प्रभ जीओ आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत का बेता नानक सगर श्रेष्ठ का जेता जी जंत्र सबता कै हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखै तिस कोई न मारै सो मुआ जिस मन हो बेसारै इस ताज अवर कहां को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाकै सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निधान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार पूर्ण पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने करतब जाने आप अंतर जमे रहे हो व्याप प्रतपाल जीन बहुपांत जो जो रचियो सो तिस त्यात जिस भावै तिस लय मिलाए भगत करै हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया करनहार नानक एक जानिया जन लागा हर एक नाए तिसकी आस न बिरथी जाए सेवक को सेवा बन आई हुकम बूझ परम पद पाई इसते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसया निरंकार बंधन तूर पय निर्वैर आन दिन पूजा है गुर के पैर ये लोक सुखिए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले साध संग मेलो करहु आनंद गुण गावह प्रभ परमानंद राम नाम तत करहु विचार दुर्लभ देखा करहु उधार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण करन का है सुहाओ आठ पहर प्रभ पेखु नेरा मिटै ज्ञान बिनसे अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छे नानक फल पावो हालत पलत दुए लेहो सवार राम नाम अंतर उर तहार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसै तिस साच परीखिया मन तन नाम जपो लिव लाए दुख दर्द मन ते पहो जाए सच वापार करहो वापारी दरगह निभाए खेप तुम्हारी एका टेकर को मन माहे नानक बहुर ना आवह जाए तिस ते दूर कहा को जाए उबरै रखन हार ते आए निरपाओ जपै सगल पाओ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जन कौ कोई न पहुचन हार सिर ऊपर ठाडा गुर सूरा नानक ताके कार्ज पूरा मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेखत उधरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हार रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सुहोत निहाल ताके निकट न आवत काल अमर पए अमरा पद पाया साध संग नानक हर तिहाया श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समगिरी एकस कट माहे अनक रंग नाना दृष्टाए नौ निद अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत तह नाद कहन न जाई अचरज विस्माद तिन देखिया जिसे आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कहट कहट व्याप रहया भगवंत धरन माहे आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बान तेन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पाणी बैसंतर माहे चार कुंट दह दिसे समाहे तिस ते भिन नहीं कोठाओ गुरप्रसाद नानक सुख पाओ वेद पुराण सिमरत मैं देख ससी अर सूर नखियत्र मैं एक बाणी प्रभ की सबको बोलै आप अडोल न कब हुंडोलै
ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਰ ਖਿਲੈ ਖੇਲ, ਮੋਲ ਨਾ ਪਾਈਐ ਗੁਣੈ ਅਮੋਲ। ਸਰਬ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਜੋਤ, ਧਾਰ ਰਹਿਓ ਸੁਆਮੀ ਓਤ ਪੋਤ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਵਿਸਾਸ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਪੇਖਣ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਭ ਧਰਮ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਨੈ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ, ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗ ਰਚਨ। ਜਿਨ ਜਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀਏ ਰਹਿਤ, ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਕਹਿਤ। ਜੋ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨੈ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੈ। ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ, ਨਾਨਕ ਦਰਸਨ ਦੇਖ ਸਭ ਮੋਹੀ। ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ, ਆ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤ ਪਤ। ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਬਿਸਥਾਰ, ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਏਕੰਕਾਰ। ਅਨਕ ਕਲਾ

जाने आवे हर प्रभ चीत, जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुलभ दे तत्काल उधारै। निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी, एक नाम मन माहे समानी। दुख रोग बिनसे पै परम, साध नाम निर्मल ताके कर्म। सब ते ऊच ताकी शोभा बनी, नानक एह गुण नाम सुख मनी। सब ते ऊच ताकी शोभा बनी, नानक एह गुण नाम सुख मनी।

ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ

निदान। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहा सुमाई। गुरीशर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। जे हौ जाना आखा नाही, कहना कथ न जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर न जाई, तीरथ नावा जी तिस पावा। विण पाने के नाए करी, जेती सिर ठू पाई वेखा। विण कर्मा के मिले लई, मत विच रतन जवाहर। माणिक जेक गुर की सिख सुनी। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर न जाई,

दे तेहा कोय न सुजई जे तिस गुण कोय करे सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया धरत धवल आकाश सुनया दीप लो पाताल सुनया पोहि न सकै काल नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नाश

मन्ने सगल पवन की सुत, मन्ने मुहि चोटा न खाए, मन्ने जाम कै साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन हुए, जिको मन जाने मन कुए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथ प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सिती संबंध, ऐसा नाम निरंजन हुए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने पावह मुख द्वार, मन्ने परवार साधार, मन्ने तरै तारे गुरसिख, मन्ने नानक पवह न भिख, ऐसा नाम निरंजन हुए, जे को मन जाने मन कोए, पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पावह दर गहमान, पंचे सोह दर राजान, पंचा का गुरेक त्यान, जे को कह करे विचार, करते कह करने नहीं सुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत, जे को बुझै हुए सचियार, तबले पर किता पार, धरती होर परे होर होर, तिस्ते पार तले कवन जोर, जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बड़ी कलाम, एहो लिखा लिख जाने कोए, लिखा लिखिया केता हुए, केता तान सुवालिहो रूप, केती दात जाने कौन कूत, किता पसाओ इको कवाओ, तिस्ते होए लक दरियाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक बार, जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाऊ, असंख पूजा असंख ताप ताऊ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोह लिवलाई तार, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक बार, जो तुद भाव है साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वड़ा त्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक सिर करह भार, नानक नीच कह विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कह सिर पार हुए, अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुणगा, अखरी लिखण बोलण बाण, अखर सिर संजोग बखान, जिने लिखे तिस सिर नाहे, जिव परमाए तिव तिपाहे, जीता कीता तिता नाओ, विण नावै नाही को थाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, भरियै हथ पैर तन देहे, पानी तो तै उतर सके, मूत पलीती कपड़ होए, देसा बूण लैया उह धोए, भरियै मत पापा कै संग, तो पै नावै कै रंग, पुन्नी पापी आखण नाही, कर कर करना लिख लै जाहो, आपे बीज आपे ही खाहु, नानक हुकमी आप हो जाहु, तीर्थ तप दया दत दान, जे को पावै तिलका मान, सुनया मनया मन कीता भाउ, अंतरगा तीर्थ मल नाहु, सब गुण तेरे मैं नाही कोई, बिन गुण कीते भगत न होए, स्वस्थ आत बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मनचाओ, कवन सुवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन सिरुति माह कवन, जित हुआ आकार, वे न पाया पंडती, जे हुआ लिख पुराण, वक्त न पायो का दिया, जे लिखन ले कुरान, थित वार न जोगी जाने, रुत माहु न कोई, जा करता सिर ठीको साजे, आपे जाने सोई, किव करे आखा किव सालाही, क्यों वरनी किव जाना, नानके आखन सब को आखे, एक दू एक

वे आई तिन चेले परवान, एक संसारिक भंडारी कलाई दीवान, जिव तिस भावै तिवै चिलावै, जिव होवै फुरमान, ओ वेखै उन्ना नदर न आवै, बहुता इहु विडान, आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जू जुग एको वेश, आसन लोए लोए भंडार, जो किछ पाया सो एका वार, कर कर वेखै सिरजनहार, नानक सच्ची की साची कार, आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, एक दू जी भाव लख हो हे, लख हो वै लख वीश, लख लख गेड़ा या किया, एक नाम जगदीश, इतराए पत पवड़िया चढ़िया हुए कीस, सुन गल्ला या काश की कीटा या ईरीस, नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ ठीस, आखण जू चुपै नह जोर,

हैं, त्रिमान हैं, निदान हैं, त्रिवर्ग हैं, असर्ग हैं, अनील हैं, अनाद हैं, अजय हैं, अजाद हैं, अजन्म है अवर्ण है, अजन्म है अवर्ण है, अभूत है अपर्ण है, अगंज है अपांज है, अचूज है अचंज है, अमीक है रफीक है, अतंत है अबंध है, निर्भूज है असूज है, अकाल है अजाल है, अला है अजा है, अनंत है महंत है, अलीक है निरसीक है, निर्लंब है असंभ है, अगम है अजम है, अभूत है अछूत है, अलोक है असुक है, अकर्म है अपर्म है, अजीत है अपीत है, अगाह है अबाह है, अमान है निदान है, अनेक है फिर एक है, भुजंग प्रछंद, नमो सर्वमान्य समस्ती निदानी, नमो देव देवे अपेकी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे, नमो पान पाने, नमो भान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत्य नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाते, समस्ति विभूते कलंकं बिनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे, नमो शस्त्रपाणे, नमो अस्त्रमाणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुगते, नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अपरे देवेशु धर्मे, नमो रोग हरता, नमो राग रूपे, नमो साहसाह, नमो पूप पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तंग स्नान, नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं, सदा सचिदानंद सर्वं प्रणासी, अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी, सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध करता, अधो उर्द अर्दं अगंग ओग हरता, परम परम परमेश्वरं प्रोच पालं, सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालंग, अचेती अपेती अनामंग कामंग, समस्त उपराजी समस्तस्ततामंग, तेरा जोर चाचरी चंद, जले हैं थले हैं, अपीत हैं अपे हैं, प्रभु हैं अजू हैं, अदेश हैं अपेश हैं, भुजंग प्रछंद, अगादे अबादे अनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमान्ये समस्ति निदाने, नमस्तुं निर्णाते, नमस्तुं परमाते, नमस्तुंग गंजे, नमस्तुंग पंजे, नमस्तुंग काले, नमस्तुंग पाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो साह साहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो शोक शोके, नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतं, नमो सर्व पीतं, नमो सर्व ज्ञानं, नमो परम तानं, नमो सर्व मंत्रं, नमो सर्व जंत्रं, नमो सर्व दृश्यं, नमो सर्व कृशं, नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे, समस्तं प्रसीदे, कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी, सदा सर्वदा हृदि सिद्धं निवासी, चरपट छंद प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे, अखल जोगे अचल भोगे, अचल राजे अटल साजे, अखल कर्मं अलख कर्मं, सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता, सर्वं पाने सर्वं माने, सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं, सर्वं भुगता सर्वं जुगता, सर्वं देवं सर्वं देवं, सर्वं काले सर्वं पाले, रूआल चंत्व प्रसाद आद रूपनाद मूरत जौन पुरख पारु, सर्वमान त्रिमान देव पेवादुदार, सर्व पालक सर्व काल सर्व गोपन काल, जतर ततर विराज ही अवतूत रूप रिसाल, नाम ताम न जात जाक रूप रंग न रेखाद पुरख उदार मूरत जौन आदशेत, देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग, जत्र तत्र दिशा विशा हुए फैलो अनुराग, नाम काम हीन पेश तुता नह जाहे, सर्वमान सर्वत्र मान सदै मान तुताहे, एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक, खेल खेला खेल खेल अनंत को फिरेक, देव पेव न जाने जिबेद और कतेव,
रूप रंग न जात पासु जानी के जीव तात्मास न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिरे चतुर चक माने प्रतीन लोक चौदह के बिखे जग जापी जेह जाप आद देवनाद मूरत थाप्यो सबै जे थाप परम रूप नीत मूरत पूर्ण पुरख पार सर्विस्वरच्यो स्वयं भव गण भंजन हार कालहीन का कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सो परम रहत भूत लख अपेश अंग राग न रंग जाकै जात बात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूप अमीक अनुस्तते पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर भंजन आदि रूप सूत अंगहीन अभंग नात्मेक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेक सर्व शास्त्र न जा नहीं जे रूप रंग रेख परम वेद प्राण जाकै नित भक नित कोट सिमरत प्राण शास्त्र नया वही वह चित मद पार छंत्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निश्चिन अनास आजान बाहु सहन साहू सा

तन काल अनभूत अंग आभा अपंग गतमित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड आलिश्य कर्म आदृश्य धर्म सर्वा परना डे अंडंड बढ़ चा

काहू लिंग करे लटकायो, काहू लख्यो हर वाची दिशा में, काहू पछा को शीश निवायो। कूबतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो, कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। कूबतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो, पूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

मन हुए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबे तुम काबू। आप हाथ दे मुहे बचावो।

कोई अवर ना त्याहूं जो पर चाहूं जो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उवरी है मरण काल का त्रास निवरी है हो जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जू करे हो रच्छा राख ले हो मुहि राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बांध दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दशकंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव की यो वेद राज ब्रह्मा ज्योति यो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दै जच्छन उपजायो आदंतिक कै अवतारा सोई गुरु समझे हो हमारा नमस्कार किस ही को हमारी सकल प्रजा जिनाप सुवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मुंह बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पहचानत चीटी ते कुंचरे असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पहचाने कट कट के पट पट की जाने जब उदकर्क करा कर तारा प्रजा तरत तब देहे अपारा जब आकर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ जेते बदन सिर सब तार है आप अपनी बूझ उचार है तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निरपकार निर्लंब आद नील अनाद संभु ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताकौ कृपाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न भिव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा के बिच सजा प्रथम संसारा एक है रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कई भूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत्पुज कान बाहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा शिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आदि जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखु बार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तह वै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है ताके काल निकट नह है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहरि हो ताके ताप तनक मैं हरि हो रिद्ध सिद्ध कर्मु सब हुई दुष्ट छाह छव सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारू कहा दारिद दुष्ट दुख ते रहा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे लेहु उबारी सर्व ठावर मोह हो सहाई दुष्ट दुख ते लेहु बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किल विक सकल देह को हरता दुष्ट दोखिन को छय करता श्री आस तुझ जब पहे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बाचत फल पावे सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अड़िल सुने गुंग जो याय सुरस न पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ निकट न तिन नर की रह हो जो या की एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहस कणी जय अर्ध सहस गुण तीन कही जय आद्र सुधी अष्टमी रववारा तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया

कह मन वसिया वाजी शब्द कनेरी कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तीरै साचा नाम मेरा आधारू साच नामे आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विट्टा हो जिस दियां हे वड्याईयां कह नानक सुनहु संतो सब धरु प्यारू साचा नाम मेरा आधारू वाजे पंचव तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत दवास कीते काल कंटक मारिया धुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कह लागे कह नानक तै सुख हुआ तित करे अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमाणी लिवै बाजो क्या करे विचारिया तुद बाज समरथ कोई नाही।

सुनहु संतहु कथेव कथ कहानिये मन चंचला चतुराई किने न पाया चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया इह माया मोहनी जिनेत भरम भुलाया माया ता मोहनी तिने कीती जिन टगौली पाईया कुर्बान कीता तिसै विटहु जिन मोह मीठा लाया कह नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया।

का मुंह लेना कीचै। जितंत पछोताई है सतगुरु का उपदेश सुन तू हुवै तेरे नाले। कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। अगम अगुचरा तिरंत न पाया अंतो न पाया किने तेरा। अपनाप तू जान ही जी जंत सब खेल तेरा। क्या कुआक वखाने या कहता विखै सब तू है जिन जग तू पाया।

यंत सब तुत उपाय कवेक प्रश्न आया। लभ लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया, कह नानक जिसनु वाप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली चाला निराली, भगता केरी बिक मार्ग चलना। लभ लोभ अहंकार था तृष्णा बहुत नाही बोलना, कने हो तिक्खी वाल हुन किए तु मार्ग जाना। गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समाणी, कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली। ज्यों तू चलाए त्यों चलै स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जिव तू चलाहे तिव चलै जिन्ना मार्ग पावे, कर कृपा जिन नाम लाहे से हर हर सदा त्यावहे। जिसनु कथा सुनाहे अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे, कह नानक सच्ची साहिब ज्यों पावे तिवै चलावहे। एहो सोहिला शब्द सुहावा, शब्दो सुहावा सदा सोहिला सतगुरु सुनाया। एहो तिन

वै हृदय तिना सुमानी पीव हो अमृत सदा रहो हर रंग जपिहो सारग पाणी कह नानक सदा गावे सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आंख वखाणी हर हर नित कर है रसना कहया कछु न जानी चित जिन का हिरलिया माया बोलन पैरवाणी कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा इहो हुआ सुमाओ शब्द सेती मन मिलया सच्चे लाया भाऊ

शिव सकता पोपाए कह करता या पे हुकुमरताए हुकुमरता या विखै गुरमुख सै बुझाए तोड़े बंधन हुवै मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनु आप करे सो हुवै कस्यों लिवलाए कह नानक आप करता या पे हुकुम बुझाए सिमर शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार न जानी तत्तै सार न जानी गुरु बाजो तत्तै सार न जानी तेही गुणी संसार भ्रम सुता सुतिया रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन हर मन वसिया बोलै अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु अंदिन हर लिवला गै जागत रहन विहानी माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी है मनो क्यों विसारी है वडदाता जी अगन में आहार पहुंचावे उसनु के पोहे न सकी जिसनु अपनी लिव लावे अपनी लिवा पे लाए गुरमुख सदा संभाली है कह नानक वडदाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया माया गुण सब इको जेही करता खेल रचाया जा तिस भाणा ता जमया परवार भला पाया लिव छुटकी लगी तृष्णा माया मरवरताया हे माया जितर विसरै मोह जय भाउ दूजा लाया कह नान गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिन विचे माया पाया हरा पमुल कह मुल न पाया जाए मुल न पाया जाए किसे विटहु रहे लोक विललाए ऐसा सतगुर जी मिले तिस नौ सिर सौपिया विचहु आप जाए जिस दा जीव तिस मिल रहै हर वसै मन आए हर आप मूल कह भाग जिन्ना के नानका जिन हर पल्लै पाए हरास मेरी मन बन जारा हरास मेरी मन बन जारा सतगुर तेरा सजानी हर हर नित जपे हो जी हो लाह खटे हो दिहाड़ी हो धन तिना मिलया जिन हर आपे भाणा कह नानक हरास मेरी मन हुआ बन जारा रसना तू रस राच रही तेरी प्यास न जाए प्यास न जाए होरत कितै जिचर हर रस पलै न पाए हर रस पाए पलै पीए हर रस बड़ न तृष्णा लागे आए इहो हर रस करमी पाई है सतगुरु मिले जिसे आए कह नानक होर रस विसरे जा हर वसै मन आए स्त्री रा मेरिया हर तुम मह जोत रखी ता तू जग मह आया हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मह आया हरे आपे माता आपे पिता जिन जो पाए जग दिखाया गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया कह नानक सृष्ट का मूल रचिया जो तरा कीता तू जग में आया मन चाओ भया प्रभागम सुनिया हर

पौड़ी नदर कले दे अपनी सतगुरु पाया एहो जियो बदन भरमिया तो सतगुरु सब सुनाया सतगुरु जी वडदाता को नहीं सब सुनियो लोग सुभाया सतगुर मिले सच पाया जिन विचों आप गवाया जिन सचो सच बुझाया जिन सचो सच

0: अनुगामन सीता राधे राम निरपौ निरंकार सतनाम जाता किया सकल जहान सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पिंडीरण जिना मिल जाओ
1: सिख सिख्या गुरु विचार नगरी क्रम लंघाए पार को लू चरखा चक्की चक

मन वसिया पूर्व लिखिया पाया कहे नानक इह शरीर प्रमाण हुआ जिन सतगुर स्यों चित लाया बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी।

तक गुरु निस्तार नाह जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुग्धा जन्म भया प्रणवत नानक तिन की सरणा जिन तू नाही विसरिया अम दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसा दुख संसार खोवा गुर नव निध दरियाओ जन्म हम कालुख तुवै सुखो टल गुर सेविया अहनस सहज सभाय दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाय सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ श्लोक महला तीजा ब्रह्म बिंदा तिसदा ब्रह्मत रहा एक शब्द लिव लाए नव निधि अठारह सिद्धि पिछा लगिया फिर है जो हर हृदय सदा वसा ब्रह्म बिंदा तिसदा ब्रह्मत रहा एक शब्द लिव लाए नव निधि अठारह सिद्धि पिछा लगिया फिर है जो हर हृदय सदा वसा बिन सतगुर नाओ ना पाई बुझो कर विचार नानक पूरा भाग सतगुर मिले सुख पाए जुग चार महला तीजा क्या गभरू क्या बिरध है मनमुख तृष्णा भुख ना जाए गुरमुख शब्दे रतिया शीतल होए आप गवाए अंदर तृप्त संतोखिया फिर भुख ना लगा आए नानक जे गुरमुख कर है सो प्रवान है जो नाम रहे लिवलाय पौड़ी हों बलिहारी तिन कौम जो गुरमुख सिखा जो हर नाम त्याए दे तिन दर्शन पिखा सुन कीर्तन हर गुण रवा हर जस मन लिखा हर नाम सलाही रंग स्यो सब किल विक कृखा

ने सब पर हर पास तरे रहाओ। हर हर नाम जप है आराध है सेवक भाई खरे किल बिख दोख गए।

हर त्यायो जन पागल के रहाओ, जन्म जन्म के भूल चूक हम, अब आए प्रभ शरण गे। तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी, हम राखो।

जो तुमरे गुण गावे स्वामी हौ बल बल बल तिनगे पवन पवन पवित्र सब किए जह धूर परी जन पगे तुमरे गुण प्रभ कह न सके हम तुम वड़

लग सतगुरु हर जपनी रहाओ, हार तुम वड अगम अगोचर स्वामी, सब त्यावै हर रुड़ने, जिनको तुमरे वड कटाक है, ते गुरमुख

मत गुरमत कथा भजंती जिन जन सुनी मनी है जिन जन तिस जन कहो कुर्बानंती हर अकथ कथा का जिन रस चाखिया तिस जन सब भूख लहंती नानक हर जन नानक जन हर

जिस ऊपर रंग लावे साई मत साई बुद्ध सियानप जित निमख न प्रभ बिसरावे संत संग लग इहु सुख पायू हर गुण सद ही गावे देखियो अचरज महा

कोट अपराध मिटै खिन पीतर ताका दुख ना रहो रहाओ। खोजत खोजत भयो बैरागी साधु संग लहो सगल त्याग एक लिव लागी।

मंच लागहायो जने अपने को मन भी तो प्रेम की खोरी जस दावत भगत रस उपजियो माया की जाली तोरी पूर्ण पूर रहे।

खिन पल रह न सकू बिन सेवा, मैं गुरमत नाम सुमारे रहा। हर हर हर हर हर मन त्यावहु, मैं हर हर नाम प्यारे। दीन दयाल भय

कृपा कृपा कर गुरु मिलाए हम पाहन शब्द गुर तारे रहाओ सतगुर नाम दृढ़ाए अत मीठा मैं लागर मलगारे नाम मै सुरत वजी है दह दिस हर मुश्की मुश्क गंधारे तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी गुरनी के बचन सुमारे गावत गाव

सतगुर मिलया परम पद पाया, हौ सतगुर कै बलिहारे, पाखंड पाखंड कर कर भरमे, लोभ पाखंड जग बुरियारे, हलत पलत दुख

अमृत सर नावारे, सतगुर ज्ञान मज्जन है नीको, मिल कलमल पाप उतारे। रहाउ संगत का गुण बहुत अधिकाई, पड़ सुआ गनक उदारे, परसन परस भय

मानुख कथै कथ लोक सुनावै जो बोलै सो न बिचारे सत संगत मिलै तां दृढ़ता आवै हर राम नाम निस्तारे जब लग जियो पिंड है साबत तब लग किछ ना सुमारे जब धर्म

पूर्व जन्म परचून कमाए, हर हर हर नाम प्यारे। गुर प्रसाद अमृत रस पाया, रस गावे रस विचारे। हर हर रूप रंग सब तेरे, मेरे लालन लाल गुलारे। जैसा रंग दे

पर कख गुरु निस्तारे। सब है ब्रह्म, ब्रह्म है पसरिया, मन बीजिया खावारे, ज्यों जन चंद्रहास दुखिया।

सतगुर की नित सरदा लागी, मोको हर गुर मेल सुवारे, साकत कर्म पानी जो मथिया, नित पानी झोल चुलारे, मिल सत संगत परम पद पाया, कड माखन के गटकारे, नित नित काया मज्जन किया, नित मल

मटक मटक चल सखी सहेली, मेरे ठाकुर के गुण सारे, गुरमुख सेवा मेरे प्रभ भाई, मैं सतगुर अलख लखारे। नारी पुरख पुरख सब नारी, सब एको पुरख मुरारे, संत जना की रेन मन भाई, मिल हर जन हर निस्तारे। ग्राम ग्राम नगर सब फिरया, रित अंतर हर

राम नाम पढ़ो गत पावो सत संगत गुर निस्तारे प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी जिव सूरज कमल निहारे मेर सुमेर मोर बहु नाचै सब उनवै कन कन हारे साकत कौ अमृत बहु सिंचहु सब डाल फूल विसुकारे ज्यो ज्यो निवह साकत नर सेती छेड़ छेड़ कड्डै बिख खारे संतन संत साध मिल रही है गुण बोलै पर उपकारे संत संत मिलै मन बिगसै ज्यो जल मिल कमल सुवारे लोग लहर सब स्वा

हर अगम अगम अगाद बूद आदेश हर प्रभु राया रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह नित झगर ते झगराया हम राख

पाए लगो नित करूं जुदरिया, हर मिलहु कर्म विधाता। लीलाट लिखे पाया गुर साधु, गुर बचनी मन तन राता। हर प्रभ आए मिले सुख पाया, सब किलविक पाप गवाता। राम रसायन जिन गुर

ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਨੋਆ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸਰਵਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ ਅਰ ਗਾਓ ਰਸਨਾਰੀ ਗੀਤ ਰਹਾਓ ਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰ ਮਾਧੋ ਹੋਹੇ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤ ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਜਿਉ ਪਰਿਉ ਡੋਲੈ ਮੁਖ ਪਸਾਰੇ ਮੀਤ ਆਜ ਕਾਲ ਫੁਨ ਤੋਹੇ ਗ੍ਰਸ ਹੈ ਸਮਝ ਰਾਖੋ ਚੀਤ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਭਜ ਲੈ ਜਾਤ ਅਵਸਰ ਬੀਤ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਭਜ ਲੈ ਜਾਤ ਅਵਸਰ ਬੀਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਲੋਕ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦਿ ਗੁਰੇ ਨਮੈ ਜੁਗਾਦ ਗੁਰੇ ਨਮੈ ਸਤਿਗੁਰੇ ਨਮੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵੇ ਨਮੈ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹਿ ਮਿਟਾਓ ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਬਿਸੰਭਰ ਏਕੈ ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਨਤ ਅਨੇਕੈ ਬੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰ ਸੁਧਾਖਰ ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇੱਕ ਆਖਰ ਕਿਨਕਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਜੀਵ ਸਾਵੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਰੀ ਨ ਆਵੈ ਕਾਂਖੀ ਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹਿ ਉਧਾਰੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ ਰਹਾਓ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟਰੈ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛ ਬਿਘਨ ਨ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅੰਦਰ ਜਾਗੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਭਉ ਨ ਵਿਆਪੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਨ ਸੰਤਾਪੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨ ਸਹਿ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਹਿਮਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੋ ਫਲ ਫਲਾ ਸੇ ਸਿਮਰਹਿ ਜਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੈ ਲਾਗੂ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਧਰੇ ਮੂਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਿਛ ਸੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤਰਾਸਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ੍ਰਿਤ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸ ਨ ਦਸਨਾ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਬੇਮਹਤਾਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸਦਾ ਬਿਨਾਸੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਸੁਖ ਬਿਹਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਆਨੰਦ ਘਨੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਵਸੈ ਹਰ ਨੇਰੇ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅਨਦਿਨ ਜਾਗ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਬੂ ਨਾ ਝੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਿਚਲ ਆਸਨ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸਨ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨਹਦ ਝੁਨਕਾਰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਮਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਜਨ ਸ਼ਰਣੀ ਪਇਆ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਬੇਦ ਉਪਾਏ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਏ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨੀਚ ਚਹੁ ਕੁੰਟ ਜਾਤੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਧਰਨਾ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਓ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਸਲੋਕ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨਾ ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ ਤੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਚੱਲੈ ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਵੈ ਤਭਾਰੀ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਉਧਾਰੀ ਅਨਕ ਪੁਨਹ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਤਰੈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਪਰ ਹਰੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਪਾਵੋ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ
सगल शिष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपतवे सुखिया लाख कोरी बंध न परे लाख करोरी बंध न परे हर का नाम जपत निस्तर है अन कमाया रंग तिख न बुझावे हर का नाम जपत आगावे जे मार्ग एह जात अकेला तै हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा ध्याई है नानक गुरमुख परम गत पाई है छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत तह पार पराही अनक बिघन जह आए संघार है हर का नाम तत्काल उधार है अनक जोन जन मैं मर जाम नाम जपत पावे विश्राम हौ मैला मल कबू न धोवे हर का नाम कोट पाप खोवे ऐसा नाम जपोह मन रंग नानक पाईए साध के संग जह मार के गने जाहे न कोसा हर का नाम उहा संग तोसा जह पेंडे महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा जहां पंथ तेरा कोना सिंहानू हर का नाम तह नाल पछानू जह महा भ्यां तप्त बहु काम तह हर के नाम की तो मुंह पर छाम जहां त्रिखा मन तू जा कर खै तह नानक हर हर अमृत बरखै भक्त जना की बर्तन नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम उधरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औकद साध कुमात हर जन के हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नोदान मन तन रंग रते रंग एक है नानक जन के बिरत विवेक है हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर के नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जुगत कब परे न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछ नाहि बियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन के माल खजीना हर धन जन को आप प्रभ दीना हर हर जन के ओट सतानी हर प्रताप जने अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रसमाते आठ पहर जन हर हर जपे हर का भगत प्रकट नहीं छपे हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संग केते तरे पार जाते हो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत रिद्वसै संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संग वडभागी पाईए संत की सेवा नाम त्याई है नाम तुल कछ अवर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास करम धर्म क्रिया सगल त्याग बन मत्ते फिरिया अनेक प्रकार किए बहुजतना पुण्य दान हो मैं बहुरतना शरीर कटाए हो मैं कर राती वर्त नेम करे बहुपाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौखंड पृथ्वी फ्रै चिर जीवे महा उदास पीसर थीवे अगन माहे होमत प्राण कनक अश्व है वर भूम दान न्योली करम करै बहु आसन जैन मार्ग संजमत साधन निमख निमख कर शरीर कटावे तो पी हो मैं मैल ना जावे हर के नाम संसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ देह छुटे गर्भ गुमान न मानते हुटे सोच करे दिनस अरात मन की मैल ना तानते जात इस देही को बहु साधना करे मन ते कभू ना भिख्या टरे जल तो वह बहु देह अनीत शुद्ध कहाँ होए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहुमूच बहुत स्याणम जम का भो व्याप अनक जतन कर तृष्णा त्रापै भेख अनेक अग्न नहीं बुझे भेख अनेक अग्न नहीं बुझे कोट पाव दरगह नहीं सिझे छूटस नाही ऊब प्याल मुह व्याप है माया जाल अवर करतूत सगली जमडान गोविंद भजन बिन तिल नहीं मान हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोले सहज सुपाए चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे जे को अपनी शोभा लोरे साध संग ए हों मैं छोरे जे को जन्म मरण ते डरे साध जना की शरणी परे जिस जन को तब दर्श प्यासा नानक तांके बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान साध संग जा का मिटा अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गनिय सब ते ऊंचा जा का मन होए सगल कीरीना हर हर नाम तिन कट कट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पिखे सगल शिष्ट साजना सुख दुख जन संदृष्टिता नानक पाप पुन्न नहीं लेपा निर्धन को धन तेरो नाव निथावे को नाव तेरा थाओ निमान्य को प्रभ तेरो मान सगल कटा को देवो दान करण करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी
अपनी गत मित जानो आपे अपन संग आप प्रभराते तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवन जानस कोए सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर मतमल हिरिया सगल उदम है उदम पला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जे घट वसै हर नाम सलोक निर्गुण यार ए आन्या सो प्रभ सदा समाल जिन किया तिस चीत रख नानक निभी नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूलते कवन दृष्टानी जिंतु सास वार सिंगारिया गर्भ अग्न मह जिन उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध भर जोबन भोजन सुख सूद बिरद प्याओ पर साख सहन मुख प्याओ बैठ को दैन ए निर्गुण गुण कछु न बूझे बख्श लेहु तो नानक सीझे जय प्रसाद तारु पर सुख बसै सुत प्रात मीत बनता संग हसै जय प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पाव कमुल्ला जय प्रसाद भोग सब रसा सगल समग्री संग साध बसा दीन हर्ष पाव करण नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मूड अंध व्यापे नानक काड लिहो प्रभापे आद अंत जो राखण हार तिस्यो प्रीत न करे गवार जाकी सेवा नव निध पावे तास्यो मूड़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर सद सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावे दरगह मान तिसे बसारे मुग्ध अजान सदा सदा ए भूलण हार नानक राखण हार पार रतन त्याग कौडी संग रचै साच छोट झूठ संग मचै जो छड़ना सो असर कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै चंदन लेप उतारै तोए गर तब प्रीत पसम संग होए अंध कूप में पतत विकराल नानक काट लिहो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करै दिन रात बाहर भेख अंतरमल माया छपस नाय कछ करै छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लोग स्वान अंतर अग्न बाहर तन स्वाह गल पाथर कैसे तरह अथाह जाके अंतर बसै प्रभाप नानक ते जन सहज समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गह लेहो ओढ़ बहावे कहां बुझारत बुझे डोरा निस कही है तो समझे पोरा कहां बिसन पद गावे गोंग जतन करे तो पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं होत ऊ हाउस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरे संग सहाई सुआव न चीत जो बैराई ता सुप्रीत बलुआ क्या ग्रह पीतर बसै आनंद केल माया रंग रसै दृढ़ कर मान मन प्रतीत काल न आवे मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ त्रोह याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लेहो अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पहे अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा में सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते हुए सुवाग्याकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी सलोक देन हार प्रभ छोड़ के लाग है आन सुआए नानक कहु न सिजई बिन ना वै पत जाए अष्टपदी दस बस तुले पाछे पावे एक बस कारण बिखोट गवावे एक पी ना दे दस पी हिरले तो मूड़ा को कहां करे जिस ठाकुर से ना ही चारा ताको की जय सद नमस्कारा जाके मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहु मन उठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तन पाया अगंत साह अपनी दे रास खात पीत बरतै अन दुलास अपनी अवान कछ बहुर साहुले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे बहुर उसका विश्वास न होवे जिसकी बस तिस आज्ञा राखे प्रभ की आज्ञा मान माथे औसे चौगुण करै निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक पाद माया के हेत सर पर होत जान अनित बिरख की छाया सो रंग लावे ओ बिनसै ओ मन पछतावे जो दिसे सो चालन हार लपट रोते अंध अंधार बटाऊ सो जो लावे नेह ताको हाथ न आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन तन कुटुंब सबाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राज जोबन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अश्व बस्त्रा मिथ्या रंग संग पे माया पेख हस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या शरण पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरे
मिथ्या नेत्र पेखत परतिर रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को धावै मिथ्या मन पर लोभ लुभावै मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या वासलेत विकारा बिन बुझे मिथ्या सब पय सफल देह नानक हर हर नाम ले बिरथी साकत की आजा साच बिना कह होवत सूचा बिरथा ना बिना तन अंध मुख आवत ताके दुर्गंध बिन सिमरण दिन रैन बिरथा बिहाए मेघ बिना जो खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यो कृपन के निरार्थ दाम धन धन ते जन जेह घट बस्यो हर नाउ नानक ताके बल बल जाओ रहत अवर कछ अवर कुमावत मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत जानन हार प्रभु परवीन बाहर भेख न काहू पीन अवर उपदेसा आपना करे आवत जावत जन्मै मरै जिसके अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरह संसार जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया अपह माने अपह आप करत नबेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा उपाव स्याणप सगल करहत सब कछ जाने आत्म की रहत जिस भावै तिस लय लड़लाए थान थनंतर रहा समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरि श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन से जाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जय प्रसाद छति अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे जय प्रसाद सुगंध अंतन लावे जिसको सिमरत परम गत पावे जय प्रसाद बसै सुख मंदर तिसे त्याय सदा मन अंदर जय प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग जय प्रसाद पाठ पटम्बर हटावे तिसे त्याग कत और लुभावे जय प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पैरता का जस गावी जय जय प्रसाद तुझ सब को मान मुखता को जस रसन बखान जय प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगह मान पावे नानक पत सेती कर जावे जय प्रसाद आरो कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जय प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन शरणी पर ठाकुर प्रभ ताके जय प्रसाद तुझको न पहुचे मन सास सास सिमरो प्रभुचे जय प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकि भगत करे जय प्रसाद भूखण पहरी जय मन तिस सिमर क्यों आलस की जय जय प्रसाद अस्वहस अस्वारी मन तिस प्रभ कौ कबू ना बिसारी जय प्रसाद बाग मिलख तना राख पुरोए प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बणत बनाई उठत बैठत सद तिसे तिहाई तिसे तिहाए जो एक लख इहां उहां नानक तेरी रखे जय प्रसाद करे पुन बहुदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को सास सास चितारी जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप जय प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जय प्रसाद तेरी पत्र है गुरु प्रसाद नानक जस कह जय प्रसाद सुनै करण नाद जय प्रसाद पेख है बिस्माद जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सह जय बसना जय प्रसाद हस का चले जय प्रसाद संपूर्ण फल है जय प्रसाद परम गत पावे जय प्रसाद सुख सहज समावे ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो गुरु प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तू प्रकट संसार तिस प्रभ को मूल अमनो विसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूढ़ तुता को जाप जय प्रसाद तेरे कारज पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जय प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता सुराच जय प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपै जप सोए आव जपाए जपै सो नाओ आप गवाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा तो हे प्रगास प्रभु दयाते कमल विगास प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दयाते मत उत्तम होए सर्व निदान प्रभ तेरी मया आपो कछु न किन्हू लया जित जित लाओ तित लगे हर नाथ नानक इन कै कछु न हाथ श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सो मुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचर्ज कथा अष्टपदी साध के संग मुखुजल होत साध संग मल सगली खोत साध के संग मिटे अभिमान साध के संग प्रगटे सुज्ञान
साधक संग बुझा प्रभ नेरा साध संग सब होत निबेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वर्णय कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभु माहे समानी साध के संग गोचर मिले साध के संग सदा प्रफुल्ल साध के संग आवह बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुए सबकी रेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग न कतहूं तावै साध संग अस्थित मन पावै साध के संग माया तिपिन साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु के संग महापुनीत साध संग किस्यो नहीं बैर साध के संग न भीगा पैर साध के संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग ना ही हो ताप साध के संग तजै सब आप आपे जाने साध बड़ाई नानक साध प्रभु बने आई साध के संग ना कबहू तावै साध के संग सदा सुख पावे साध संग बस अगोचर लह साधु के संग अजर सह साध के संग बस थान ऊंचे साधु के संग महल पहुंचे साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान साध के संग सब कुल उधार साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार साधु के संग सो धन पावे जिस धन ते सब को वरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभा सुरदेवा साधु के संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्वथान गम साध के संग सर्वथान गम नानक साध के संग सफल जन्म साध के संग नहीं कष्टाल दर्शन भेटत होत निहाल साध के संग कलोखत हरै साध के संग नरक पर हरै साध के संग इहां उहां सुहेला साध संग बिछरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावे साध के संग ना बिरथा जावे पार ब्रह्म साध हृदवस नानक उतरै साध सुन रस साधिक संग सुनो हरनाओ साध संग हर के गुण गाओ साध के संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निसरै साध के संग लगे प्रभ मीठा साधु के संग घटकट डीठा साध संग पय अग्गकारी साध संगत पई हमारी साध के संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध की महिमा बेद न जाने जेता सुने ते तब ख्याने साध की उपमा ते गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का ना ही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंच ते ऊंची साध की शोभा मूच ते मूची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभ भेद न पाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेख है एकस बिन कोए नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जलमह कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्प को सोख ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान जैसे राज रंक को लागे तुलपवान ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक ज्यो बसदा को खोदै को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी कै एह गुनाओ नानक जो पाव का सहज सुभाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रकाश जैसे तारू पर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा मन अपने है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी सही जन पये नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सरल तिरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा ब्रह्म ज्ञानी के ना ही तंदा ब्रह्म ज्ञानी तावत बंधा ब्रह्म ज्ञानी क्या हुई सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी क्या एक रंग ब्रह्म ज्ञानी क्या बसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी क्या मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी क्या कर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संघेता ब्रह्म ज्ञानी कह होए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी कह निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है ब्रह्म ज्ञानी कौ खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है। ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाय दाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखान, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जान। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक। और तारे जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान। निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक हो अपरस सगल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श। पार्त्र रूप न पेख नेत्र, साध की टहल संत संग हेत। करण न सुने काहू की निंदा, सबते जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद भिख्या पर हरे, मन की बास न मनते टरे। इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मध्य को ऐसा

होवे तिस भगौती की मत उत्तम होवे, भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन रूपए बिसन प्रीत, हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगौती भगवंत को पावे। सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है, राम नाम आत्म है शुद्ध है, राम नाम सार पीवे, उस पंडित का उपदेश जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे। सो पंडित फिर जो न आवे, वेद प्राण सिमरत बुझे मूल, सुख मह जान असूल, चौ वर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौ वर्णा मह जपै कौ नाम, जो जो जपै तिस की गत होए, साध संग पावै जन कोए, कर कृपा अंतर उतारे, पस प्रेत मुक्त पाथर को तारे, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत कितना पाइये धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म, जिसका मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दुर्गह परवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सोची परे, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुक्त सो कहवे, तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तै नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित घर राखे तैसा तिन नाओ, आपे करण करावन जोग, प्रभु भावै सोई फन होग, पसरो आप अणत तरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता विनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पे निहाल। श्लोक उस्तत कर है अनेक जन, अंत न पारा वार, नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनक प्रकार। अष्टपदी कई कोट हुए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पे तीर्थवासी, कई कोट बन ब्रह्मदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कब काब विचार है, कई कोट नवतन नाम त्याव है, नानक करते का अंत न पाव है। कई कोट पे अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्प को हिरे, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट प्रदेश प्रमाहे, जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प पाए, कई कोट पाथर बिरख निपजाए, कई कोट पौन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्यर सुनिखत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूत धार है, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसास, कई कोट की रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट कीचर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जक्ष किन्नर पिशाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच, सब ते नेरा सभूत दूर, नानक आप अलिप्त रहा भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट भोजो नी फिर, कई कोट बैठे थी खाहे, कई कोट काले थक पाहे, कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जय जय भाणा तह तह राखे, नानक सब किछ प्रभ के हाथे, कई कोट पे बैरागी, राम नाम संग तिन लिवलागी, कई कोट प्रभ को खोजंते, आत्म है पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिलो प्रभ विनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आपस प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन। कई कोट खाणी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट होए अवतार, कोई जुगत कीनो विस्तार, कई बार पसरू पासार, सदा सदा एक एक अंकार, कई कोट कीने बहुपात, प्राप्त होए ब्रह्मा है समात, ताका अंत न जाने कोई, आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होत आत्म प्रगास, कई कोट तत् के बेते, सदा निहार है को नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवे, अमर पय सद ही जीवे, कई कोट नाम गुण गावे, आत्म रस सुख सहज समावे, अपने जन को सास सास समारे, नानक होए परमेश्वर के प्यारे। श्लोक करण कारण प्रभु एक है, दूसर नाही कोए,
ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ।

0: ಕರ್ಣ ಜಲ ಥಲ ಮಹಿಯಲ ಸೋಯೇ ಅಷ್ಟಪದಿ ಕರ್ಣ ಕರಾವಣ ಕರ್ಣ ಜೋಗ ಜೋತ ಸ್ಭಾವೈ ಸೋಯಿ ಹೋವ ಖಿನ್ಮೈ ಥಾ ಪುಥಾ ಪಣಹಾರ ಅಂತನೇ ಕಿಚ ಪಾರಾ ವಾರಾ ಹುಕ್ಮೇ ಧಾರ ಧರ ರಹಾವೈ ಹುಕ್ಮೇ ಉಪಜಾ ಹುಕ್ಮ ಸಮಾವೈ ಹುಕ್ಮೇ ಊಚ ನೀಚ ವ್ಯವಹಾರ ਹੁਕਮੇ ਅਨਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਸਮੈ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਾਨਕ ਗਤ ਪਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਥ ਤਰਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਸੇ ਰਾਖੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤਤ ਉਦਾਰੈ ਆਪ ਕਰੇ ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੈ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰੈ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ ਖੇਲੈ ਬਿਕਸੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੁਕਾਰ ਕਰਾਵੈ ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰਨਾਵੈ ਕਹੁ ਮਾਨਕ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ ਇਸਕੇ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਲੇ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ ਅਨ ਜਾਣਤ ਬਿਖਿਆ ਮਹਿ ਰਚੈ ਜੇ ਜਾਣਤ ਆਪਨ ਆਪ ਬਚੈ ਭਰਮੇ ਭੁੱਲਾ ਦਹਿ ਦਿਸਧਾਵੈ ਨਿਮਖ ਮਹਾਈ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਫਿਰਿਆਵੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਖਿਨ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜਾਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੁ ਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦਹਿ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ਜਾਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਤਾਕਾ ਲਿਖਨ ਗਨੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਕੀ ਰਾਸ ਘੱਟ ਘੱਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਣਾਈ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਬਡਾਈ ਇਸ ਕਾ ਬਲ ਨਾਹੀ ਇਸ ਹਾਥ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪਰਾ ਜੀਓ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਖੁਨ ਥੀਓ ਕਬੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੈ ਕਬੂ ਸੋਗ ਹਰਖ ਰੰਗ ਹਸੈ ਕਬੂ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ ਕਬੂ ਊ ਬਕਾਸ ਪਿਆਲ ਕਬੂ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਵਣਹਾਰ ਕਬੂ ਨਿਰਤ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਤ ਕਬੂ ਸੋਈ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਬੂ ਮਹਾਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ ਕਬਹੂ ਸਰਕ ਕੀ ਹੋਤਰਵਾਲ ਕਬੂ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬਡਰਾਜਾ ਕਬੂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ ਕਬੂ ਅਪਕੀਰਤ ਮਹਿ ਆਵੈ ਕਬੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ਜਿਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸਚ ਕਹਿ ਕਬੂ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਕਰੇ ਬਖਿਆਨ ਕਬੂ ਮੋਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨ ਕਬੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਬੂ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਮੁਖ ਗਿਆਨ ਕਬੂ ਕੀਟ ਹਸ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਜੀਆ ਅਨਕ ਜੋਨ ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਮੀਆ ਨਾਨਾ ਰੁਜ ਸਵਾਂਗੀ ਦਿਖਾਵੈ ਜਿਉ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਚਾਵੈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਬੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪਾਵੈ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨ ਆਵੈ ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਇਕ ਰੰਗ ਸਦਾ ਬਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸੰਗ ਜੋ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋ ਤਸਮਾਨਾ ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਸਲੋਕ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਨਕ ਗਰਬ ਗਲੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਸਕੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਮਾਨ ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸਵਾਨ ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋ ਬਨਵੰਤ ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸਟਾ ਕਾ ਜੰਤ ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੈ ਜਨਮ ਮਰੈ ਬੋਜੋਨ ਭਰਮਾਵੈ ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ ਨਾਨਕ ਇਹਾ ਮੁਕਤ ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਿਰ ਬਾਵੈ ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਨ ਕਚ ਸੰਗ ਨ ਜਾਵੈ ਬਹੁ ਲਸਕਰ ਮਾਨਕ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ ਪਲ ਭੀਤਰ ਤਾਕਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ ਖਿਨਮੈ ਹੋਏ ਜੈ ਪਸਮੰਤ ਕਿਸੈ ਨਾ ਬਦੈ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹੂੰ ਧਾਰੇ ਸ੍ਰਮ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੇ ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰਾ ਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕੋ ਕੈਸੇ ਗਵੈ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ਤਿਸੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੈ ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਨ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਜਬ ਲਗ ਜਾਣਾ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਏ ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਜਬ ਇਹ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ ਤਬ ਲਗ ਗਰਬ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ ਜਬ ਧਾਰੇ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਤਬ ਲਗ ਨੀਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗਮਾਏ ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇਸ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹੋ ਛੂਟੈ ਸਹਿਸ ਖਟੇ ਲੱਖ ਕੋਟ ਧਾਵੈ ਤ੍ਰਿਪ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ਅਨਕ ਭੋਗ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਖਪ ਖਪ ਮਰੈ ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਬਡਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਆਪੇ ਆਪ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਇਸਕੇ ਹਾਥ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਜੋ ਕਿਛ ਕਿਨੋ ਸੁਖ ਨੈ ਰੰਗ ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭੂ ਕੈ ਸੰਗ ਬੂਝੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਵਿਵੇਕ ਅਪ ਹੈ ਏਕ ਅਪ ਹੈ ਅਨੇਕ ਮਨੇ ਨ ਬਿਨਸੈ ਆਵ ਨ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ ਆਪ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝੈ ਆਪ ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ ਆਪ ਕਿਨੂ ਆਪਨ ਵਿਸਥਾਰ ਸਭ ਕਛ ਉਸਕਾ ਉਹ ਕਰਣੈ ਹਾਰ ਉਸਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿਛ ਹੋਏ ਥਾਂ ਥਨੰਤਰੇ ਕੈ ਸੋਏ ਆਪਣੇ ਚਲਤ ਆਪ ਕਰਣੈ ਹਾਰ ਕੌਤਕ ਕਰੈ ਰੰਗ ਅਪਾਰ ਮਨ ਮਹਿ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੀ ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਏ ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ गुर प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कोट मधे किने बिरला चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी सरण बख्याणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन परै सो जन उतरण हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपति संत के दुख नारजा कटे संत के दुखन जानते नहीं छुट्टे संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए संत के दुखन मत हुए मलीन संत के दुखन शोभा ते हीन संत के हाथे को रखे ना कोई संत के दुखन थान प्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जी करे नानक संत संग निंदक भीतर है संत के दुखन ते मुख पवे संत
1: संतन का दुखन सर्प जोन पाए संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन का दुखन तृष्णामा जले संत के दुखन सब को शले संत के दुखन सबको छले संत के दुखन तेज सब जाए संत के दुख नीच निचाए संत दुखी का थाव को नाहे नानक संत पावे ता ओए पी गत पाहे संत कनंदक महा तताई संत कनंदक हन टिक न पाई संत कनंदक महा त्यारा संत कनंदक परमेश्वर मारा संत कनंदक राज तेहीन संत कनंदक दुखिया यार दीन संत कनंदक को सर्व रोग संत कनंदक को सदा बिजोग संत कनंदा दुख मैं दुख नानक संत पावे ता उसका पी होए मोख संत का दुखी सदा अपवित संत का दुखी कैसा का नहीं मित संत के दुखी को डान लागे संत के दुखी को सब त्याग गए संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा बेकारी संत का दुखी जन्म मरे संत की दुख ना सुख ते टरे संत के दुखी को ना ही ठाओ नानक संत भावे ताले मिलाए संत का दुखी अद बीज ते टूटे संत का दुखी के तह का जिन ना पहुंचे संत के दुखी को ध्यान भरमाइए संत का दुखी उजड़ पाइए संत का दुखी अंतर ते थोथा ज्यों सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ के शनाहे आपन भी जा पे ही खाहे संत के दुखी को अवरण रख नहार नानक संत भावता ले उबार संत का दुखी यो मिल लाए जो चल बिहोन मछली तड़पड़ाए संत का दुखी भोखा नहीं राजा ज्यो पावक इंद्रणी त्रापै संत का दुखी छुटा इकेला ज्यो बुआड़ तिल खेत माहे दोहेला संत का दुखी धर्म च रहत संत का दुखी सब मिथ्या कहत किरतन देखा तुर ही पया नानक ज्योतिष भावे सोई थे आ संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए संत का दुखी हदा सहकाई है संत का दुखी न मरे ना जीवाई है संत के दुखी की पूजा है ना आसा संत का दुखी उठ जले निराशा संत का दुख ना त्रिष्ठा कोई जैसा भाव है तैसा कोई होए पया कितना मीठा कोई नानक जाने सच्चा सोए सब कट तिसके करना हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उस्तत करो दिन रात तिसा त्यावो सास गिरास सब कशवर तै तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया अपना खेल आप करना हार दूसर कौन कहे विचार जिसनो कृपा करै तस्यापन नाम दे बड़ भागी नानक जन से सलोक तजो सियान तो सुरजन हो सिमरो हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पाओ जाए अष्टपदी मानुख कीट विरथि सब जान देवन को कह भगवान जिस कह दिया रह गाय बहुरना तृष्णा ला गया मार रख एक आप मानुख कह किसना ही हाथ तिसका हुक्म बोध सुख होए तिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागै कोई उस्तत मन में कारण अलंकार कर मन मेरे सद व्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो रस वेला करड़े जियो नैनो फिर ठाकुर का रंग साध संग मन सह सब संग चरण चलो मार्ग गोबिंद मिटै पाप जपिया हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दर कै नानको जल मथा बड़ पागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करें विचार से तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जान हो ते सुखी एको एक एक पछन ए त्योत कियो सोजी जान नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्ह निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुजै तिसकी जानो तृष्णा बुझे साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग त्यो हर जन रहत अंदन कीर्तन केवल बखियान कृष्णा सोई निर्वाण हे कियो पग जिस जन की आसा तिसकी कटिया जम की फांसा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक दिसन लागे दुख जिस को हर प्रभ मन चित आवै सो संत सुहेला नहीं डुलावै जिस प्रभ अपना कृपा करै सो सेवक कहो किस ते डरै जय सा सदृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरु प्रसाद तत सब बुझिया जब देखो तब सब किस मूल नानक सो सुख न सोई स्थूल नह किस जन्म नह किस मरै आपन चलत आप ही करै आवन जावन दृष्ट आन दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आओ सगल मह आपन कजुग तज थापो थाप विनाशी नाही किस खंड धारण धारो ब्रह्मंड अलाक अभेव पुरख प्रताप आप जपाय था नानक जाप जिन प्रभ जाता सो शोभावंत सगल संसार उतरै तनमंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख सारण आपे मेर ले कृपाल गुर का शब्द जप पय निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनों कृपा करें बड़पागे नाम जपत पावै विश्राम नानक तिन पुरख गौतम करमान जो किश करै सुप्रभ कै रंग सदा दब सैर संग सह सुपाय होवै सो होए करण हर पछाणै सोए प्रभ का गिया जन नीठ लगाना जय सा तैसा दृष्टाना जिस ते उपजे ते समाए समाए ओए सोखन दानु नु बन आए आप सुखवाप दीनो मान नानक प्रभ जने को जान सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ कृपा जननहार जा कै सिमरन उतरी है नानक तिस बलहार अष्टपति टूटी कांड नहार गोपाल सर्व जिया पे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस ते विरता कोई ना हे रे मन मेरे सदा हर जाप बनासी प्रभ आपे आप आपन किया कछु ना होए जिस सो परण लोचा कोई तिस बिन नाही तेरे किस काम गत नानक जापे हर नाम रूपवंत होए नाही मोह है प्रभ की जोत सगल घट सो है धनवंता होए क्या को गर्भ जा सब किस तिसका दिया दर्भ है अत सूरा जे को कहावे प्रभ की गला बिना कहता है जे को होए वह दातार ते दीन हार जाने गावार जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग नानक सोजन सदा रोग ज्यो मंदिर को थामे थामन त्यों गुर का शब्द मना स्थामन ज्यो पाखाण नाव चढ़ता रहे प्राणी गुर चरण लग चनिता रहे ज्यो अंधकार दीपक प्रकाश गुर दर्शन देख मन होए विकास ज्यो महा ध्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग में जोत प्रगटावे तिन संतन की बांछो धूर नानक हर लोचा पूर मन मूर्ख काहे बिरलाई है पूर्व लेखे का लिखे आपार और त्याग तुम तिसा चितार जो कछ करै सोई सुखमान भूला काहे फिरया जान कौन बखताई तेरा संग लभ करे रस लोभी पतंग राम नाम जपेर दे माहे नानक पत छेती घर जाहे जिस वखर को लैण तो आया राम नाम संतन कर पाया ताजी अपमान लिख मनमोल राम नाम हिरदे मैं तुर लाल खेप संत संग चाल अवर त्याग विख्या जंजाल तन तन कह सब कोय मुख जलहर दरगै सो यो व्यापार विरला व्यापार है नानक ता कह सद बलाहार है चरण साधके तोये तोये पियो अर्प साधको अपना जियो साध के तूर करो स्नान साधु पर जाइए कुर्बान साध से बबड़ पागी पाई है साध संग हर कीर्तन गाई है अनक बिघन ते साधु रख है हर गुण गाय अमृत रस चाख है ओट गही संत है दर आया सर सुख नानक तेह पाया मृतक गोजी वाल नहार भूखे को देवता धार सरवण दान जाकी दृष्टि माहे पुरलेखा का लहना पाहे सब किस तिशाओ करना जोग ते संबंध सुर हुआ न होग जप जन सदा सदा दिन रैणी साब ते निर्मल हे करणी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल किया जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवै हर प्रवचीत भगत भगत सुनिया तेह लोहे जाके हिरदय को होए सच करणी सच ताकी रहत सच हिरदय सतमुख कहत साची दृढ़ साचाकार सच वरतै साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता सलोक रूप न रेख न रंग के शत्रुगुण ते प्रभ भिन्न ते सब जाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न अष्टपदी अविनाशी प्रवण मैराथ मानक की तो प्रीत त्याग चिते पर नाही किश कोय सर्वनंतरे को सोए आपे बिना आपे दाना गैर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद साध तेरे की चरणी पाओ, नानक कै मन हे अनराओ। मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई हो, घरन परन जाका नेत्र पोर तिसका मंत्रण जाना हो। आनंद रूप मंगल सद जाके सर्व तोग सुनिया है करता के, राज में राज योग में जोगी, तप में तपिस्त्र गृहस्थ में भोगी, त्याय त्याय भगत है सुख पाया, नानक तिस पुरख का किन अंत न पाया। जाकी लीला की मिथना ही सगल देव हारे अवगाहे, पिता का जन्म के जाने पूत, सगल पुरोही अपने सूत। समत ज्ञान ध्यान जन दे जान दास नाम त्या वैसे, ते गुण में जा को परमाए, जन्म मरा फिर आवै जाए, ऊच नीच तिसके स्थान, जैसा जिना वै तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना पेक करै करंग, नाना बिरकिनो विस्थार, प्रभु बनासी एक ओंकार। नाना चलत के रेखन माहे, पूर रो पूर्ण सब ठाए, नाना बिदकर बंत बनाई, अपनी गेम ते आपे पाई। सब घट दिस के सब दिस के ठाओ, जप जप जीव है नानक हर नाओ, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरिया सब पावन, नाम के समुद्र सुन श्रवण कर, कृपा से अपना नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए। रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख समा समाणी, सत कर्म जाके रचना, सत मूल सत सत उत्पात, सत करणी निर्मल निर्मली, सब जाय दिशा सब भली, सत नाम प्रभु का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुर ते पाई। सत वजन साधु उपदेश, सत ते जन जाकर दे प्रवेश, सत नृत बूझा जे कोई नाम जप ताकी गत होए, आप सत किया सब सत, आपे जन अपनी मित गत, जिसके शिष्ट सो करण हार, अवरण बूझ करत विचार, करत कि मैं थना जाने किया, नानक ज्योतिष भाव सो वरतिया। बिसमन बिसम पै बिसमाद, जिन बूझे तिस आया स्वाद, प्रभ कै रंग राज जन रहे, प्रभ गुर कै बचन पदार्थ लेहे, ओए राते दुख काटनहार, जाकै समत रह संसार, जन कै सेवक सोबड़ भागी, जन कै संग एकले विलागी, गुण गोबिंद कीर्तन जन गावे, गुरु प्रसाद नानक फल पावै, सलोक आद सच जुगाद सच है पे सच, नानक होसी पे सच अष्टपदी। चरण सत सत प्रसनहार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत त्यावनहार, आप सत सत सब धारी, आपे गुण आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभु भगता, सुरत सत सत जस सुनता, बुझनहार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभु सोए, सत स्वरूप हृदय जनमानिया, करण करावन तन मूल पछाणिया, जाके हृदय विश्वास प्रभु आया, सत ज्ञान तिस मन प्रगटाया, पै तिन पोहे बसाना, जिते उपजा तिस माहे समाना, बस तमाहे ले बह प्रगटाई, ताको पिन्ना कहना जाई, पूजा बुझनहार बभेक, नारायण मिले नानक एक, ठाकुर का सेवका ज्ञाकारी, ठाकुर का सेव कसरा पुजारी, ठाकुर के सेव कै मन प्रतीत, ठाकुर के सेव के निर्मल रीत, ठाकुर कौ सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम कै रंग, सेवक उपरा पालनहारा, सेवक की राख निरंकारा, सो सेवक जिह दिया प्रभु धारै, नानक सो सेवक सास सास समारै, अपने जन का पर्दा टाके, अपने सेव की सर पर राखे, अपने दास को देव बढ़ाई, अपने सेव को नाम जपाई, अपने सेवक की आप पत राख, ताकि गतमंद को ना लाख, प्रभु के सेव को ना पूछे, प्रभु के सेव को उचते उचे, जो प्रभु अपने सेवा लाया, नानक सो सेवक दहत से प्रगटाया, निकी कीरी मह कल राख, भस्म करा लश्कर कोट लाख, जिसका सास ना काटते आप, ताको राख दे कर हाथ, मानस जतन करत बो पांत, तिसके करतो बिरथे जात, मार ना रख और ना कोई, सर्व जिया का रख सोए, काहे सोच करे रे पानी, जप नानक प्रभ अलख वेडाणी, बारंबार बार प्रभ जपिया पी अमृत मन तंत्र पिया नाम रतन जन गुरमुख पाया ते स्कश अवरण इंद्रिष्टाया नाम तन नाम रूप रंग नाम सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन तृप्ता ने मन तन नाम है नाम समान ने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सद काम बोलो जस जेह बात दिन रात प्रभ अपने जन की नींद आद करे भगतात्म कह जाए प्रभ अपने सुरह है समाए जो हो वाह हो उतो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण का एक न जानो आठ पहर प्रभ सहजूरे कहो नानक से जन पूरे मन मेरे दिन की उठ लहे मन तन अपना दिन जन दे जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोका दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसका दर्श सब पाप मिटावे और स्यान सगरी छाड तिस जन की तो सेवा लाग आवन जान न होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ तिसकै संग सिख उदरै नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिख की करा प्रतपाल सेवक को गुरु दा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उचरै सतगुर सिख के बंधन काटै गुर का सिख बेकार ते हटै सतगुर सिख को नाम धन दे गुर का सिख वडभागी हे सतगुर सिख का हलत पलत सवार है नानक सतगुर सिख को जी नाल संवार गुर के ग्रह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आप सको कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सद त्यावे मन बेचा सतगुर के पास ते सेवके कार्य रास सेवा कर तो नेकामी तिस को होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा किसे आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बेस विश्वे गुर का मन मान सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनक बार गुर को पल जाओ सरवण दान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म मैं जन जन मैं पार ब्रह्म एक है अपनी काश परम सहज सहन पलिया न जाइए नानक ऐसा गुरबड़ भागी पाइय सफल दर्शन पेखत पुनीत पर छतरण गत निर्मल रीत पेट तो संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगाह गवे सुन कर बचन करना गाने मनसो तो खा तुम पतिया ने पूरा गुरु आखे उजाका मंत्र अमृत दृढ़ पेठा हुए संत गुण ब्यंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिसले मिलाए जेवा एक उठत अनेक सतपुरख पूर्ण बबेक काहु बोलना पहो जल प्राणी आगाम गोचर प्रभ निर्वाण निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत के न पाई अनक भगत बंदर निरखरा चरण कमल हृदय सिमरया सब बलहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने हो हर रस पावे जन कोई अमृत पीवे अमृत सो होए उस पुरख का नहीं कदे विनाश जाचा मन प्रगटे गुंता आस आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे मोह माया कै संग न ले मन में रख हर हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक भरम मोह दुख तह ते नासे तब कमाहे ठांड वरताई आनंद पया दुख नाठे पाई जन मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेशे पाओ चुका निरपो हे बसे सगल ब्याद मे खन से जिसका सातन कृपा धारी साध संग जपना मुरारी थे तो पाई जो के ब्रह्म गावन सुन नानक हर हर जस श्रवण निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला धार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोई सरबन ते को सोए ओत पोत रव्या रूप रंग पे प्रकाश साध के संग रच रचना अपनी कल तारी अनक बार नानक बलहारी सलोक सात न चल बिन भजन बिखया सगली सार हर हर नाम कमावना नानके हे तन सार अष्टपदी संत जनान जकरो विचार एक सिमर नाम आधार अवरो पावसा मित बसारो चरण कमल में और तारो करण कारण सो प्रभु सम्राट दृढ़ कर गहो नाम हर वत ए तन संचो हो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन कहो चार कुंटे उठ पावे सो तन हर सेवा ते पावे। जिस सुख कौन दवा शमीत सो सुख साधु संग प्रीत। जिस शोभा को करे भली करनी सा शोभा पज हर की शरणी। अनको पावी रोग न जाए रोग मिटा हर औखध लाए सरवण दान में हर नाम दान जप नानक दरगह प्रवान। मन प्रबोधो हर कह नाए दै दे ताव के आवे ठाए ताको पिक न लागे कोई जा कर दे रस हर सोए। कल पाती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ। पाओ बिन सह पूर्ण होए आस भगत पाया तुम प्रगा स्थित कर जाए दसा बनासी कहो नानक काटी जम फांसी। तद विचार कह जन साचा जन्म मरै सोका चोका चा आवा गौन मिटै प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरदेव। इं रतन जन्म का हो उधार हर हर सिमर प्राण उधार अनको पावना छूट न हारे सिमर सात वेद विचारे। हार की भगत करो मन लाए मन मन सदनान फल पाए संग न चाल तेरा धना तो गल फटावे मूर्ख मना। सो तमीत कुटाम ब्यार बनता इनते कहो तुम कवन सनाथा राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवन छुटकार। आशा हिति रथ सवारी झूठा डंप झूठ पासारी।
0: नाम विसार नानक पछताना गुर की मत तो लेह आने भगत बिना बहु डूबे सियाने। हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत। चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे। आप जपो अवर नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पाओ। सार भूत सत हर को नाओ सह सुपाए नान गुण गाओ। गुण गावत तेरी उतर समैल बिनस जाए हो मैं बिख फैल। होहे अचिंत बसै सुख नाल सास ग्रास हर नाम समाल। छाड़ सियानप सगली मना साध संग पावे सच तना। हर पूंजी संच करो व्यवहार इहां सुख दरगह जयकार। सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख। एको जप एको साल आहे एक सिमर एको मन आहे। एक के गुण गाओ अनंत मन का जाप एक भगवंत। एको एक एक हर आप पूर्ण पूरे हो प्रभ व्याप। अनक विस्तार एक दे भय एक अराध पराशत गए। मन तन अंतर एक प्रभराता गुर प्रसाद नानक एक जाता। श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरण आए। नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी। जाचक जन जाचा प्रवदान कर कृपा देवो हर नाम। साध जना की मांगो धूर पार ब्रह्म श्रद्धा पूर। सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो। चरण कमल से लाग्या प्रीत भगत करो प्रभ की नितनीत। एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार। प्रभ की दृष्ट महासुख होए हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाख्या से जन तृप्ताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने। सुपार परे प्रेम रस रंग उपजे जाओ साध के संग। परे शरण आन सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन लेव लाग। बड़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए। सेवकी मनसा पूरी पही सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभ होयो दयाल सेवकी नो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख भ्रम गया। इच पुन्नी श्रद्धा सब पूरी रव रहा सत्संग हजूरी। जिसका सातन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाये। सो क्यों बिसरजे का न पाने सो क्यों बिसरजे किया जाने। सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरे जे अग्न मह राखे गुर प्रसाद को बिरला लाख है। सो क्यों बिसरे जे बिकते काड है जन्म जन्म का टूटा गंड है। गुर पूरे तत् एह बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो एह काम आन त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पाओ आप जपो अवर है नाम जपाओ। भगत पाए तरिय संसार बिन भक्ति तन होसी चार। सर्व कल्याण सुख निध नाम बूढ़त जात पाए विश्राम। सगल दुख का होवत नास नानक नाम जपो गुणतास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर एही सुआओ। नेत्रोपेख दर्श सुख होए मन बिकसे साध चरण धोए। भगत जना के मन तन रंग बिरला को पावे संग। एक बस दीजे कर मया गुर प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कहीं न जाए नानक रहा सर्व समाए। प्रभ बख्शंद दीन दयाल भक्त विछल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल। आद पुरख कारण करतार भक्त जना के प्राण आधार। जो जो जपै सो होए पुनीत भक्त पाए लावे मन हीत। हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। सर्व वैकुंठ मुक्त मोक पाए एक नमक हर के गुण गाए। अनकराज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई। बहुपूजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत पलिसो करनी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास श्लोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन्न समाधि आप आपन किया नानका आप ही फिर जाप अष्टपदी जब अकार एह कछ न दृष्टिता पाप पुण्य तब कहते होता जब धारी अपन सुन्न समाध तब बैर विरोध के ससंग कुमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हर्ख सोग को किसे व्यापत जब अपन आप पार ब्रह्म तब मोह का किस होवत परम आपन खेल आप वर्तीजा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किसको गनी जब एक है अरगम अपार तब नरक स्वर्ग को कौन उतार जब निर्गुण प्रभ सह सुपाए तब सिर सख्त कहो हो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत तरह तब कवन निडर कवन कत डरे अपन चल तब करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अवनाशी सुख अपन आसन तह जन्म मरण को कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे आपन आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो हो क्या तोता तह बिन मैल कहो हो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कहो मान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह छल छिद्र लगत कहो गीस जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तह किसे भूख कवन तृप्तावे करण करावण करने हार नान करते का नहीं सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माय बाप मित्र सुत पाई जह सर्व कला आप है पर भीन तह वेद देव कहाँ कोचीन जब अपन आप उतार तो सगन अपसगन कहाँ विचार जह अपन उच्च अपन आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कही अचेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जान हो आप जह अचल अचेद अभेद समाया उहां किसे व्यापत माया आपस को आप है देश ते गुण का नाही प्रवेश जह एक है एक एक भगवंता तह कौन अचंत किस लागे चिंता जह आपन आप पतियारा तह कौन कथै कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा नानक आपस को आप पहुंचा जह आप रचो परपंच अकार तह गुण में केनो विस्तार पाप पुण्य तह पई कहावत कौ नरक कौ स्वर्ग बंछावत आल जाल माया जंजाल हौ मैं मोह भरम पै पार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बख्यान आपन खेल आप कर देख्या खेल संकोच तो नानक एक है जह अवगत भगत तह आप जह पसरै पासार संत प्रताप दूहू पाख का पह तनी उनकी शोभा उनहु बनी आप है कौतक करे आनंद चोज आप है रस भोगन निर्जोग जिस पावे तिस अपन नाय लावे जिस पावे तिस खेल खिलावे बेसुमार अथा अगणत अतोले ज्यो बुलाव त्यो नानक दास बोले श्लोक जिए जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार आप है एक आप विस्तार जहाँ तिस भावे तं सृष्ट पाए अपने भाणे ले समाए तुम ते भिन्न नहीं कि छोए अपन सूत सब जगत परोए जाको प्रभ जीव आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो संदर्शी तत् का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता जिए जंत्र सबता के हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखे तिस कोय न मारे सो मुआ जिस मनो बिसार है तिस तज अवर कहाँ को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जा कै सब हाथ अंतर बाहर जान हो साथ गुण निदान बे अंत पार नानक दास सदा बलिहार पूर्ण पूर है दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो व्याप प्रतपाल जीन बहु पात जो जो रचो सो तिसे त्यात जिस पावे तिस लय मिलाए भगत करे हर के गुण गाए माने अंतर विश्वास कर मान्या करण हार नानक एक जान्या जन लागा हर एक कहनाए तिसकी आस न बिरथी जाए सेवको सेवा बन आई हुकम बूझ परम पद पाई इसते ऊपर नहीं विचार जा क्या मन बसा निरंकार बंधन तोर पै निर्वैर अंतन पूजा गुर के पैर एह लोक सुखी पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ अपह मेले साध संग मिल करो आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरण का यह सुहाओ आठ पहर प्रभ एको नेरा मिटे ज्ञान बिन सै अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छे नानक फल पावो हलत पलत दो लेह सवार राम नाम अंतर और तार पूरे गुर की पूरी दिख्या जिसमन बसै तसाज परीख्या मन तन नाम जपोहले बुलाए दुख दर्द मन ते पहु जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगह ने बह खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक भौर न आवह जाहे तिसते दूर कहाँ को जाए उबरह राखण हार त्याय निर्भौ जपै सगल भौ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जिस पर ब्राखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाय मिटे अहंकार तिस जन को कोई न पहुचन हार से रूप ठाडा गुरसूरा नानकता के कारज पूरा मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेखत उदरत सृष्ट चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सोहोत निहाल ताकै निकट न आवत काल अमर भय अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया सलोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास अष्टपति संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री कस घटमा है अनक रंग नाना दृष्टा है नवनित अमृत प्रभ का नाम देही मह इसका विश्राम सुन समाद अनहत कहनाद कहन न जाई अचरज विस्माद तिन देखा जिस आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट ब्याप रहा भगवंत तरण माहे आकाश प्याल सर्ब लोक पूर्ण प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी वह संतर माहे चार कुंट दह दिसे समाहे तिस्ते पिन नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद पुराण सिमृत मह देख सस्य सो नक्षत्र मह एक बाणी प्रभ की सब को बोले आप अडोल न कभू डोले सर्व कलाकर खेल है खेल मोल न पाइये गुण है अमोल सर्व ज्योत मह जाकी ज्योत तार रहो स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद परम का नास नानक तिन मह एहु बिसास संत जना का पेखण सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुने सब वचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी एह रहत सत वचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने करण करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बाहर पी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्राप्ति सगली उत्पत जिस भावे ता करे विस्तार तिस भावे ता एक अंकार अनक कला लखी न जाए जिस भावे तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कहिए दूर आपे आप भरपूर अंतर्गत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्व भूत आप वर्तारा सर्व नैन आप देखण हारा सगल समग्री जाका तना आपन जस आप ही सोना आवन जानक खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया सब के मद अलिप्तो रह जो किच कहना सो आपे कह आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे तले समाए इस ते होए सुना ही बुरा उरे कहो हो कि न कछ करा आप भला करतूत अतनी की आपे जाने अपने जी की आप साच धारी सब साच ओत पोत आपन संग्राच ताकि गतमित कहीं न जाए दूसर होए ता सो जी पाए तिसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक एह जान जो जाने तिस सदा सुख होए आप मिलाए ले प्रभ से ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन कै एह सुआओ जन कै संग चित आवे नाओ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार श्लोक पूरा।

मन अंतर की उतरा चंद आसनेत त्यागो त्रांग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्नि सागर तरो हर तन के परले हो पंडार नानक गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवारो धारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितव नारायण एक एक रूप जाके रंगन एक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमुलीक लाल एह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोक है निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्दनाद वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महांत कह माथे नानक उदरे तिनकै साथे शरण जोग सुन शरणी आए कर कृपा प्रभाप मिलाए मिट गए बैर पहे सबरीन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पे गुरु

कर्तर साध दया दरतारी नानक निभीखे पहमारी प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकागर चीत सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए स्थान बोरना होए आवन जान हर तन खड़ लै जिन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रित नव निध बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सकल।

अने गुरु नानक नाम बचन मन सुने। एह निदान जपै मन कोय सब जुग मैं ताकी गत होए। गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी। सगल मथांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम। कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै। जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए। जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आ

आओ अखीर विच शब्द गायन करिए। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, नानक दास मुख ते जो बोले इहा उहा सच होवे। ये शब्द गायन करके आप जी पासों खिमा दे दास कहवांगे। गुरु चरणा विखे अरदास बेनती की जाएगी, उपरंत सतगुरां दा मुख वाक फिर कड़ा प्रसादी देग वरतेगी। परिवार वालों सारी संगत नूं पहला ही बेनती करदे आं कि कोई भी गुरु का प्यारा माई भाई गुरु का लंगर छकण तो बिना ना जाए। परिवार वालों चेचे तौर ते बेनती है कि सारियां संगतां ने गुरु का लंगर चाह पानी छक के जाण दी कृपालता करनी। आओ शब्द गायन करिए जी, उपरंत आनंद साहब जी दे पाठ होंगे।

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरों श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आई है जिस रिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवै धाए, सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह। गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहान साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिन्हां आप जी दा नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अनडट कीता। इन्हां प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंह सिंघणियां धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटवाए, खोपरियां उतरवाईयां तनियारियां नाल चिरवाए, सिखी के सां सुआसां संग निभाई, तिना दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु नाम चित्यावे, चित्यावन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रक्षा रियायत, देग तेग फतेह, बिरद की पैज, अंत की जीत, श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सिरदान, नाम दान, श्री अमृतसर जी के दर्शन इशनान, चौकियां झंडे बूंगे जुगो जोगे अटल, धर्म का जयकार, खालसा जी बोलो जी। सिखां दा मन नीवा, मत उची, मत पत दे राखे आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ। जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है, समूह गुरुद्वारे गुरुधामां दी सेवा संभाल, अपने प्यारे खालसा जी नूं बख्शिश करो। हे निमाणियां दे माण, निताणियां दे तां, नियोटियां दी ओट, निआसरियां दे आसरे, पतत पावन कृपा निदान, सच्चे पिता धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज, आप जी दे दर करते सेवक काका आसान सिंह टौक, सुपुत्र सरदार जसविंदर सिंह टौक, बीबी करमजीत कौर टौंक दे जन्मदिन की खुशी विच, बती अलीना कौर टाटला, बच्चा कैमरन सिंह टाटला दे जन्म की खुशी विच, गरीब नवास के पातशाह सपुत्र सरदार मुख्तियार सिंह टाटला, बीबी कुलदीप कौर टाटला सपुत्र अते सपुत्री सरदार मुख्तियार सिंह टाटला, बीबी कुलदीप कौर टाटला पोतरा ते पोतरी, दोतरा ते दोतरी सरदार जसविंदर सिंह टौंक, बीबी करमजीत कौर टौंक, सच्चे पातशाह जीओ, इन्हां बच्चियां दे जन्म की खुशी विच, गरीब नवाज सच्चे पिता जीओ, सेवक परिवारां ने आप जी का ओट आसरा तकिया है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जीओ, कृपा दृष्टि बनाउणी मेरे दाता जी, इन्हां बच्चियां दे सिर ते मेहरां भरिया हथ रखना, अपने चरणा कमलों के नाल बच्चों जोड़ी रखना, देह रोगता दियां दातां प्रदान करनिया, अपने दरों करों उच्च विद्या की दात नाम बाणी नाल प्यार बख्शिश करना, तंदुरुस्तियां बख्शिश करनिया, सेवक परिवारों वालों आप जी का ओट आसरा लेंद्या होया अमृतमयी बाणी श्री सुखमनी साहब जी के पाठ और रब्बी बाणी के कीर्तन करवाए गए ने। सतगुरु कृपा करनी बाणी का पाठ करद, बाणी दे कीर्तन गायन करदिया, विचारां करदिया अनेकां होईयां भुल्लां बख्श देणियां जी, अगों वास्ते सिर ते मेरा भरिया हथ रखना,
ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੌਂਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 501 ਦਮੜਾ ਡਾਲਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। 501 ਡਾਲਰ ਟਾਟਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਥਾਂਏ ਪਾਉਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣੇ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿਖੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਥਾਂਏ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੇ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜੀ ਰੱਖਣੇ, ਲਾਜਪਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਦਾਤਾ ਜੀਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਦੇਗ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ

ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ।

0: सतनाम। श्री वाहे गुरु साहिब जीओ, मैतान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तो दया गए अरदास, मैं होर थाऊं नाहीं, जिस पहे करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। सोरठ महला पंजवा। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की सरना, संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गहना। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की सरना, संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गहना। हम संतन स्यों बनयाई, पूरब लिखिया पाई, ए मन तेरा पाई रहाओ। संतन स्यो मेरी लेवा देवी, संतन स्यो ब्योहारा, संतन स्यो हमलाहा खाटिया, हर भगत परे भंडारा। संतन मोको पूंजी सौंपी, तो उतरिया मन का धोखा, धर्म राए अब कहा करै गो, जो फाट्यो सगलो लेखा। महानंद पै सुख पाया, संतन कै प्रसादे, कहो नानक हरस्यो मन मानिया, रंग रते बिस्मा दे। कहो नानक हर स्यो मन मानिया, रंग रते बिस्मा दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गौड़ी सुखमनी महला पंजवा। श्लोक एक ओंकार सत गुर प्रसाद आद गुर ए नमः, जुगाद गुर ए नमः, सत गुर ए नमः, श्री गुरुदेव ए नमः। अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माए मिटावो। सिमरो जात बिसंबर एक है, नाम जपत आगन तनेक है। वेद पुराण सिमरत सुधाखर, कीने राम नाम एकाखर। किनका एक जिस जीव सावे, ताकि महिमा गनी ना आवे। काखी एक है दर्श तुहारो, नानक उन संग मोए उधारो। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जिना के मन विश्राम रहाओ। प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ कै सिमरन दूख जम नसै। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अंध न जागै। प्रभ कै सिमरन भव न व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभ का सिमरन साध कै संग, सर्व निदान नानक हर रंग। प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नवनिध, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा। प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ कै सिमरन दरगह मानी। प्रभ कै सिमरन होय सो भला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला। से सिमरै जिन आप सिमराए, नानक ता कैला गो पाए। प्रभ का सिमरन सब तै ऊंचा, प्रभ कै सिमरन उदरै मूचा, प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै, प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूरन आसा, प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नामृत माय समाए, प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जनका दासन दसना, प्रभ को सिमरे से तनवंते, प्रभ को सिमरे से पतवंते, प्रभ को सिमरे से जन परवान, प्रभ को सिमरे से पुरख प्रधान, प्रभ को सिमरे से बहमोताजे, प्रभ को सिमरे से सर्ब के राजे, प्रभ को सिमरे से सुखवासी, प्रभ को सिमरे सदा बनासी, सिमरन ते लागे जन आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला, प्रभ को सिमरे से पर पुकारी, प्रभ को सिमरे तिन सद बलहारी, प्रभ को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरे तिन सुख बिहावे, प्रभ को सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरे तिन निर्मल रीता, प्रभ को सिमरे तिन आनंद कनेरे, प्रभ को सिमरे बसे हर नेरे, संत कृपा ते अंदर जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे, प्रभ कै सिमरन कबहू न चूरे, प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहज समानी, प्रभ कै सिमरन नह चल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल विगासन, प्रभ कै सिमरन अनहा चुनकार सुख, प्रभ सिमरन का अंत नंबार, सिमरे से जन जिन को प्रमया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग भेद उपाए, हर सिमरन पहे सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौकुंट जाते, हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, सलोग दीन दरद दुख पंजना कट कट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी जह मात पिता सुतमीत ना पाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाई, जह महा बयान दूत जम दलै, तै केवल नाम संग तेरे चलै, जय मुश्किल होवै अत भारी, हर को नाम खिन माहे उदारी, आनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरे, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हो सुखिया, लाख करोरी बंधन परे, हर का नाम जपत निस्तरे, अनेक माया रंग तखना बुझावे, हर का नाम जपत आगावे, जय मारग एह जात केला, तय हर नाम संग ओ सुहेला, ऐसा नाम मन सदा त्याहिए, नानक गुरमुख परम गत पाइए, छूटत नहीं कोट लखबाई, नाम जपत तय पार पराई, आनक बिघन जय आय संगारे, हर का नाम तत्काल उदारे, आनक जोन जन्मै मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हाओ मैला मल कबहू न तोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइए साध कै संग, जेहे मारग के गने जाए ना कोसा, हर का नाम हुआ तक तोसा, जे पैडे महा अन्न गुबारा, हर का नाम संग उजियारा, जहां पंथ तेरा को न सजानू, हर का नाम तै नाल पछानू, जह महा प्यान तपत बोखाम, तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम, जहां त्रिखा मन तुझ आकर खै, तै नानक हर हर अमृत पर कह, भगत जना की बर्तन नाम, संत जना कै मन विश्राम, हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उदरे जन कोट, हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमात, हर जन के हर नाम निदान, पार्व नम जन की नो दान, मान तन रंग रते रंग एके, नानक जन के बिरत विवेके, हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर के नाम जन को तृप्त भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परे न पंग, हर का नाम जन की वडियाई, हर के नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नहीं वियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा, हर हर जन कै मालिक दीना, हर धन जन को आप प्रभ दीना, हर हर जन के ओट सतानी, हर प्रताप जने अवर न जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रसमाते, आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की भगत मुकद बो करे, नानक जन संकेते तरे, पार जाते हो हर को नाम, काम धेन हर हर गुणगाम सप्ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्त दुखलता नाम की महिमा संत रिद वसै संत प्रताप दुर्त सबनसै संत का संग वडपा घी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तुल कछवर न कोय नानक गुरमुख नाम पावे जन कोय श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वज्ञान योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सकल त्याग मन मदे फ्रिया अनेक प्रकार किए बहु जतना पुण दान हो मैं बहु रतना शरीर कटाए हो मैं कर राती वर्त नेम करे बहु भाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे माँ उदास तपीसर थीवे अग्न माहे होमत प्राण कनक अश्व है वर भूमदान निवली कर्म करे बहुआसन जैन मारक संजन अत साधन निमक निमक कर शरीर कटावे तो भी हो मैं मैल न जावे हर के नाम सम सर कछ नाए नानक गुरमुख नाम जपत गत पाए मन कामना तीरथ दे छुटे गर्भ गुमान न मन ते हुटे सोच करे दिन सर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बहु साधना करे मन ते कबू न भिख्या टरे जल तो वह बहु दे अनीत सुत का होए काची पीत मन हर के नाम की महिमा उच नानक नाम उदरे पतित बहु मूच बहु स्यानक जमका बहु व्यापे अनक जतन करते स्नात आपे एक अनेक अगर नहीं बुझे कोट पाव दरगह नहीं सीजे छूटस नाही उपया मोब्यापे माया जाल अवर करतू सगली जम डाने गोबिंद भजन बिन तिन नहीं माने हर का नाम जप तुग जाए नानक बोले सह सुभाय चार पदार्थ देखो मांगे साजना की सेवा लागे जेको अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे मन बेचे सतगुर के पास जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे जे को अपनी शोभा लोरे साथ संग ए होमे छोरे जे को जन्म मरण ते डरे साथ जना की सरनी परे जिस जन को प्रभु दर्श पयासा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रदान साथ संग जाका मटे अपमान आपस को जो जाने नीचा सो उगनी है सबते ऊंचा जाका मन होए सगल की रीना हर हर नाम तिन कट कट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेख है सगल श्रेष्ठ साजना सुख दुख जन समदृष्टेता नानक पा पुन नहीं लेपा नितन को तन तेरो नाव ने थावे को नाव तेरा थाओ निमाने को प्रब तेरो मान सगल कटा को देवो दान करण करा वनहार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत में जानो आपे आपन संग आप प्रभराते तुमरी उस्ता तुम ते हुए नानक अवर ना जानस कोय सर्व धर्म में श्रेष्ठ क्रम हर को नाम जप निर्मल करम सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उत्तम में उत्तम बला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जस सुन सुन बखानी सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जे कट बसे हर नाम श्लोक निर्गुणिया रिया नया सो प्रभ सदा समाल जिनकी या तिस चीत रख नानक निबही नाल अष्टपदी रमैया के गुणचेत प्राणी कवन मूलते कवन दृष्टानी जिंतु साज सवार सीगारिया गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझ है प्यारे दूध पर जो बन भोजन सुख सूद बिरद पया ऊपर साख सैन मुख प्याओ बैठ को दैन एव निर्गुण गुण कछू न बूझे बख्श लियो तो नानक सीजे जय प्रसाद तर ऊपर सुख बसे सुत प्रात मीत बनता संग हसे जय प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमला जय प्रसाद पोगे सब रसा सगल समग्री संग साध बसा दीने हस्त पाव कारण नेत्र रसना तसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मुड़ अन्न व्यापे नानक काढ़ लेहो प्रभु आपे आदंत जो राखन हार त्यो प्रीत न करे गवा ना की सेवा नौ नित पावे ता स्यो मूड़ा मान नहीं लावे जो ठाकुर सज सदा हजूरे ताको वंदा जान दूरे जा की टहल पावे दरगे मान तसे विसारे मुग्ध अजान सदा सदा ए पूनन हार नानक राखन हार अपार रतन त्याग कौड़ी संग रचे साच छोड़ झूठ संग मचे जो छड़ना सो अस्थिर खरमाने जो हो वंशो दूर पराने छोड़ जाए तिसका श्रम करे संग सहाई पर हरे चंदन लेप उतारे तोये गर्दब प्रीत पसम संग होए अंधकूप में पतित बिकराल नानक काढ़ लेहो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर पेक अंतर मलमाया छुप स्नाहे कच्छ करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लोभ सुवान अंतर अगन बाहर तन स्वागल पाथर कैसे तरे यथा जाके अंतर बसे प्रभ आप नानक तेजन सह समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गए लेहो ओर निभावे कहाँ बुजारत बूझे डोरा निस्कैये तो समझे पोरा कहाँ बिसनपत गावे गंग जतन करे तो पीसुर पंग कहो पंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तुआ उस कवन करतार करना मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरे संग सहाई सो आवे न चीत जो बैराई ता सो प्रीत पलुआ के ग्रह पीतर वसै आनंद आनंद केल माया रंग रस है दृढ़ कर्मा न मने प्रतीत काल न आवे मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ बिकार महालोभ द्रोह याहू जुगत बयाने कई जन्म नानक राख ले हो आपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पे अरदास जियो पिन सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा में सूख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुम रह सूत्र तारी तुम ते हो सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास दा कुर्बानी सलोक देन हार प्रभ छोड़ के ला गए आन सुआए नानक कहू न सी जई बिरना मैं पत जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पाचे पावे एक बस्त कारण भी खोड़ गवावे एक भी न ले दस भी हिर ले तो मूड़ा को कहा करे जिस ठाकुर से ना ही चारा ताको की जय सद नमस्कारा जाके मन लागा प्रभ मीठा सर्व सूखता हूँ मन बूठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगनत साहो अपनी दे रास खात पीत बरते अनत उलास अपनी अमान कचबा हर साहूले अज्ञानी मन रोज करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे बौर उसका विश्वास न होवे जिसकी बस किस आगे रखे प्रभ की आज्ञा माने माथे उसके चौगुन करे निहाल नानक साहिब सदा दिहाल अनेक पांत माया के हेत सर पर होवत जान अनेक बिरख की छाया सो रंग लावे ओ दिन से ओ मन पछतावे जो दिसे सो चालन हार लपट रहे होते अंध अंधार बटाओ सो जो लावे ने ताको आप न आवे के मन हर के नाम की प्रिय सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन धन कुटुम संभाया मिथ्या मिथ्या तन धन कुटुम संभाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राज जुबन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अस्ता मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रोह मोह मान मिथ्या आपस ऊपर कर तुगमान अस्थिर भगत साथ की चरण नानक जप जप जीवे हर के चन मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिर है मिथ्या नेत्र पेखर पत्र रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुसाद मिथ्या चन पर विकार को तावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत विकारा बिन बूझे मिथ्या सफ़े सफल दे नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आर्जा साथ बिना के होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवता के दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरता ब्याय मेघ बिना जो खेती जाय गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम जो कृपन के निरारथ ताम तन तन तेजन जयगट बस्यो हर नाव नानक ताके बल बल जाओ रहत अवर कछ अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखो गंडलावत जानन हार प्रभु पर बीन बाहर पेख न काहू पीन और उपदेशे आप न करे आवत जावत जन्मे मरे जिसके अंतर बसे निरंकार जिसकी सीख तरह संसार जो तुम जान जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नानक उंजन चरण पर आता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया पे माने आपे आप करत निबेरा किसह दूर जनावत किसह बुझावत नेरा उपाव स्यानक सगल ते रहत सब कछ जाने आत्म की रहत जिस पावे तिस लय लाए थान थनंतर रया समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जब नानक हरी श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन जाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुर देव अष्टपदी जय प्रसाद छत्ती अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माए जय प्रसाद सुगंधत तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे जय प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याय सदा मन अंदर जय प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग जय प्रसाद पाठ टंब खडावे तिसह त्याग कतवर लुभावे जय प्रसाद सुख सह सोवी जय मन आठ पैरता का जस का विजय जय प्रसाद सब तुझ सबको माने मुक्ता को जस रसन बखाने जय प्रसाद तेरो रहता तरम मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत्तर गय मान पावे नानक पद सेती कर जावे जय प्रसाद आरो कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जय प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताके जय प्रसाद तुझ को ना पहुंचे मन सास सा सिमरो प्रभ ऊंचे जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जय प्रसाद आपू कन पहरी जय मन ते सिमत को आलस की जय जय प्रसाद आसहास अस्वारी मन तिस प्रभ को कबू ना बिसारी जय प्रसाद बाग मिलक दना राख परोई प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सत सह त्याय तिसह त्याय जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरी रख है जय प्रसाद करे पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को सास सास सितारी जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप जय प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जय प्रसाद तेरी पत रहे गुर प्रसाद नानक जस कहे जय प्रसाद सुने करण नाथ जय प्रसाद बेखे बिस्मात जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सह जय बसना जय प्रसाद हस्त कर चले जय प्रसाद संपूर्ण फले जय प्रसाद परम गत पावे जय प्रसाद सुख सह समावे ऐसा प्रभ त्याग अवर कतलागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तू प्रकट संसार तिस प्रभ को मूल ना मनो बिसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर्तुता को जाप जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जय प्रसाद तू पावे साथ रे मन मेरे तू ता स्योराज जय प्रसाद सबकी गुत होए नानक जाप जपै जब सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गवाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते होए प्रगाश प्रभु दया ते कमल बिगास प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए सर्व निदान प्रभ तेरी मया आपो कछु ना किन्हू लया जित जित लावो तित लगे हरनाथ नानक इनके कछु ना हाथ श्लोक अगम अगाध पा ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साधना की अचरज कथाष्टपदी साथ के संग मुख उजल होत साथ संग मल सगली खोत साथ के संग मटे अपमान साथ के अर्पण प्रप्रे सो ज्ञान साथ के संग बुझे प्रभ मेरा साथ संग सब होत निबेरा साथ के संग पाए नाम रतन साथ के संग एक ऊपर जतन साथ की महिमा वर्णे कौन प्राणी नानक साथ की शोभा प्रभ माय समानी साथ के संग अगोचर मिले साथ के संग सदा प्रफल है साथ के संग आवे बस पंचा साथ संग अमृत रस पुंचा साथ संग होए सबकी रैन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग न कथू तावे साध संग अस्तित मन पावे साध के संग माया ते पिन सान संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मी साधु के संग महापुनीत साध संग किस्यो नहीं बैर साध के संग ना भीगा पैर साध के संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग ना ही हो ताप साध के संग तजै सब आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साध के संग ना कत हुतावे साध के संग सदा सुख पावे साध संग बस अगोचर लहे साधु के संग अजरस है साध के संग बसे थान ऊंचे साधु के संग महल पहुंचे साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निदान नानक साधु के कुर्बान साध के संग सब कुल उधार है साध संग साधन मीट कुटुंब निस्तारे साधु के संग सो तन पावे जिस तन ते सबको वरसावे साध संग तमराय करे सेवा साध के संग शोभा सुदेवा साधु के संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्व थान गम नानक साध के संग सफल जन्म साध के संग नाही कचकाल दर्शन पेटत होत निहाल साध के संग कलुकत हरे साध के संग नरक पर हरे साध के संग इहां उहां सुहेला साध संग बिचरत हर मेला जो इच्छे सोई फल पावे साध के संग ना बिरथा जावे पार ब्रह्म साध रिल बसे नान खुदरे साथ सुन रसै साथ के संग सुनो हर नाम साथ संग हर के गुन गाओ साथ के संग ना मनते बिसरे साथ संग सर पर निस्तरे साथ के संग लगे प्रभ मीठा साधु के संकट काट डीठा साध संग पय आज्ञाकारी साध संकत पई हमारी साध के संग मिटे सब रोग नानक साध पेटे संजोग साध की बहमा बेद न जाने जेता सुने तेता बख्याने साध की उपमा ते गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंचे ऊंची साध की शोभा मूंचते मूंची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभ भेद न पाई सलोक मन साचा मुख साचा सोए अवरना पेखै कस बिन होए नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोग जैसे सूर सर्प को सो ब्रह्म ज्ञानी कह दृश्य समान जैसे राज रंग को लागे तुलपवान ब्रह्म ज्ञानी कह धीरज एक ज्यों बसदा को खोदे को चंदन लेख ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यो पावक का सह सुभाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कह मन होए प्रगास जैसे तार ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सात्र समान ब्रह्म ज्ञानी कह ना अभिमान ब्रह्म ज्ञानी उसते ऊंचा मन अपने है सबते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नानक जिन प्रभु आप करे ब्रह्म ज्ञानी सकल की रीना आत्मरत ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की जस ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कज बुरा ना भया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी से महा ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी के ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सो पला ब्रह्म ज्ञानी सुफल भला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह एक रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसे प्रभसंग ब्रह्म ज्ञानी कह नाम उदार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम प्रवार ब्रह्म ज्ञानी सदा संजागत ब्रह्म ज्ञानी अहम बहुत त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कह कर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता ब्रह्म ज्ञानी कह हो अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मन ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभु आप ब्रह्म ज्ञानी का वट प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दस वट पागी पाइये ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी कह सकल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कथ्या न जाए दाखर ब्रह्म ज्ञानी सर्प का ठाकर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना है ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता ब्रह्म ज्ञानी सजीव है नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक उड़ता रह जो अंतर नाम सर्व में पेख है भगवान निमक निमक ठाकुर नमस्कार नानक ओ अपरस सकल निस्तारे अष्टपति मिथ्या ना ही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श पर त्रै रूप न पेखे नेत्र साध की टह संसंग हेत करण न सुने काहू की निंदा सबते जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद विख्या पर हरे मन की बासना मन ते टरे इंद्री जीत पंच दोख दे रहत नानक कोर मदे को ऐसा परस बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न बिसन की माया ते हो पिन कर्म करत हो वह नहीं कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू पल की इच्छा नहीं बाचे केवल भगत कीर्तन संग्राचे मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरे नाम जपावे नानक को वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सकल त्यागे दुष्ट का संग मनते बिनसे सगला परम कर पूजे सगल पाप ब्रह्म शासन पापा मल खोवे तिस भगवती कीमत उत्तम होवे भगवंत की टहल करे नित नित मन तन अर्पय बिन प्रवेगी भगवती पवन कारण सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिन से सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म सा संग पापा मल खोवे तिस भगवती की मतूप तम होवे भगवंत की टहल करे नित नित मान तन अर्पय बसन प्रीत हर के चन हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगत को पावे सो पंडित जो मन पर बोधे राम नाम आतम में सोदे राम नाम सारस पीवे उस पंडित के उपदेश जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो नावे वेद प्राण सिमरत बुझे मूल सुखम मैं जाने असूल चौवरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरना में जपे को नाम जो जो जपै तिसकी गत होए साथ संग पावे जन कोए कर कृपा अंतर उर्धारे पस प्रेत मगत पाथर को तारे सब रोका ओखर नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत के तहना भाई है तरम नानक बिस्मिल है जिस लिखिया तुरक्रम जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सतनाम दास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसन तर पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास कर गए परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सोजी परे सकल संग आत्म उदास तैसी जुगत नानक रामदास प्रभ की आगे आत्म हितावे जीवन मुकत सो कहावे तैसा हरक तैसा उस शोक सदा अनंत रहे ब्यो तैसा श्रवण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा मान तैसा रंग तैसा राजान जो वर्ताए साई जुगत नानक ओ पूरख कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाव जेत जेत कर राखे तैसा तिना आपे करण करावन जोग प्रपावे सो ही फुन भोग पसरे आप अनंत रंग लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग जैसी मते तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता नास सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पय निहाल श्लोक उस्तत करे अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभ्रचि बहु बिज अनेक प्रकार अष्टदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन ब्रह्म उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपी सर होते कई कोट आत्म त्यान तारे कई कोट कब का विचारे कई कोट नवतन नाम त्यावे नानक करते का अंत न पावे कई कोट पहे अम्मानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट आबक आत्म निकोर कई कोट पर दर्प को हर है कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया श्रम माए कई कोट प्रदेश ब्रह्माए जित जित लाभ हो तत तत लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्व उपाय कई कोट पाथर बिरख निप जाए कई कोट पौन पानी बैसंतर कई कोट देश
1: भूमंडल कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूत तारै नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तारै कई कोट राजस्तामस साकत कई कोट वेद प्राण सिमरत अरसासत कई कोट की रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरी मीर स्वर्ण थीवे कई कोट जख किन्नर पिसाच कई कोट भूत प्रेत सुगर मृगाच सब ते नेरै सब हुते दूर नानक आप अलपत रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर निवासी कई कोट जन्मे जीवे मरे कई कोट बोझो नी फिरे कई कोट बैठ थी खाए कई कोट काले थक पाए कई कोट की तदवंत कई कोट माया में चिंत जय जय पाणा तै तै राखे नानक सब किछ प्रभ के हाथे कई कोट पै बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी कई कोट प्रभ को खोजंते आत्म में पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रभ प्यास तिनको मिलो प्रभ अविनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हुए आप सुप्रसन्न नानक दे जन सदा धन धन कई कोट खाणी अर खंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट हुए अवतार कई जुगत कीनो विस्तार कई बार पसरे पासार सदा सदा एक एक अंकार कई कोट कीने बहुपात प्रभ ते हुए प्रभ माहे समात ताका अंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होत आत्म प्रकाश कई कोट तत के बीते सदा निहारे को नेत्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर पये सद सद ही जीवे कई कोट नाम गुण गावे आत्मरस सुखस मावे अपने जन को सा सा समारे नानक ओए परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोए नानक तिस बलहारण जल थल मई अल सो अष्टपदी करण करावन करना जोग जो

0: जिस होवे सो प्रसन्न अष्टपदि अविनाशी ब्रह्म मन में राख मानु की तू प्रीत त्याग तिस्ते परे नाहि किछ होए सर्व निंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बख्शेंद सा तेरे की चरनी पाओ नानक के मन एहो अनराओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन परन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर अनद रूप मंगल सत जाके सर्व थोक सुनिए कर ताके राज मैं राज जोग मैं जोगी तप मैं तपी सरग्रस्त मैं भोगी त्याय त्याय भक्त सुख पाया नानक तिस पुरख का किनय अंत न पाया जाकी लीला की मितना है सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जान भूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जनदास नाम ते आवे से तय गुण में जाको परमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच तिसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना बेकरे करंग नाना बिद कीनो विस्तार प्रभु अपनासी एकंकार नाना चलत करे खिन माहे पूरे ओ पूर्ण सब ठाए नाना बिद कर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीवे नानक नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे स्मृत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आगास पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पूरिया सब पवन नाम के संग उदरे संसरवन कर कृपा जिस आपने नाम लाए नारक चौथे पद में सूजन गात पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख समाय समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत वचन साधु उपदेश सत जन जाके हृदय प्रवेश सत नृत बुझे जे कोय नाम जपत ता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसके श्रेष्ठो करने हार अवर न बुझ करत विचार करते कि मित न जाने किया नानक जो तिस पावे सो वर्तिया बेसमन बिसम भय बिस्माद जिन बुझा तिस आया स्वाद प्रभ के रंग राज जन रहे गुर के वचन पदार्थ लहे वे दाते दुख काटन हार जाके संग तेरे संसार जन का सेवक सोवड़ भागी जन के संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसन्हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत्यावनहार आप सत सत सबधारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जसंता पूजन हार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जन मान्या करन करावन तिन मूल पछान्या जा कर दे विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया भय ते निरपो हो बसाना जिस ते उपजा तिस माय समाना बस माय ले बस गडाई ताको पिन्ना कहना जाए बुझे बुझन हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभ का सेवक नाम के रंग सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक की राखे निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ धारे नानक सो सेवक सास सास मारे अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर राखे अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत राखे ताकि गदमित कोई न लाखे प्रभ के सेवक को न पहुंचाए प्रभ के सेवक ऊंचे ऊंचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दया दिस प्रगटाया निकी कीरी मैकल राखे पसम करे लश्कर कोट लाखे जिसका सास न काटत आप ताको राख देख रहात मानस जतन करत बहुपात तिसके कर्तव्य बिरथे जात मारे न राखे अवर न कोए सर्व जी आखा राखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जब नानक प्रभ अलग विनाणी बारंबार बार प्रभ जपिए भी अमृत हो मंतन तृपिए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिसके अवर नहीं दृष्टाया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुखर नाम का संग नाम रस जो जंतृपता ने मंतन नामे नाम समान है उठत बैठत सोबत नाम कहो नानक जन के सतकाम बोलो जस जीवा दिन रात प्रभ अपने जन की नीदात करे भगत आत्म के चाहे प्रभु अपने सो रह है सुमाए जो हुआ हुवत सो चाने प्रभु अपने का हुक्म बिछाने तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कह एक ना जानो, आड़ कह प्रभ से हजूरे, कहो नानक से जन पूरे, मन मेरे दिन की ओट ले, मंथन अपना तिन जन दे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सोचन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर सब पाप मिटावे, अवर स्यानप सकली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आप अनजान न होवी तेरा, नानक तिस जन कह पूजो सद पैरा सलोक, सत पुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाओ, तिसके संग सिख उदरे, नानक हर गुण गाओ। अश्वदी सतगुर सिक्की करे प्रतपाल, सिवक को गुर सदा दयाल, सिक्की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै, सतगुर सिक्के बंधन काटै, गुर का सिख बेकार ते हटै, सतगुर सिखो नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी हे,
1: सतगुर सिख का हलत पलत सवारै, नानक सतगुर सिख कहो जी नाल समारै, गुर के गृह सेवक जो रहै, गुर की आज्ञा मन में सहै, आपस कहो कर कछ न जन आवै, हर हर नाम हृदय सद त्यावै, मन बेचै सतगुर के पास, तिस सेवक के कार्ज रास, सेवा करत होए ने कामी, तिस कहो होत प्रापत स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, बिस बिस्वे गुर का मन मानै, सो सेवक परमेश्वर की गत जानै, सो सत गुर जिस हृदय हर नाओ, अनेक बार गुर कौ बल जाओ, सर्व निदान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म मैं जान जान मैं पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कछ परम, सहस स्यानप लया ना जाइए, नानक ऐसा गुर बट पागी पाई है, सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत, पेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे, सुन कर बचन करन आगाने, मन संतोख आत्म पतियाने, पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखे होए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तिस लय मिलाए, जेहबा एक उस्तत अनेक, सतपुरख पूरन विवेक, काहू बोलना पहुंचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत के नैना पाई, अनेक भगत बंधन नित करें, चरण कमल हृदय सिमरें, सत बलिहारी सतगुरु अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, एहो हर रस पावै जन कोय, अमृत पीवै अमर सो होय, उस पुरख का नाही कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुणतास, आठ बहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक कौ दे, मोह माया के संग न लेप, मन में राखै हर हर एक, अंधकार दीपक परगासे, नानक परम मोह दुख तह ते नासे, तपत माहे ठांड वरताई, आनंद पया दुख नठे पाई, जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेशे, पाओ चुका निरपाओ होए बसे, सगल व्याध मनते खै नसे, जिसका सातिन कृपा धारी, साध संग जप नाम मुरारी, थित पाई चुके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवन, निर्गुण आप सरगुण पियो ही, कला धार जिन सगली मोही, अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर बिन दूजा नाही कोय, सर्व निरंतर एको सोए, ओत पोत रवया रूप रंग, भय प्रगास साध कै संग, रच रचना अपनी कल तारी, अनेक बार नानक बलिहारी, श्लोक साथ न चाले बिन भजन, बिख्या सगली चार, हर हर नाम कुमावना, नानक एहो धन सार, अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार, अवरो पाव सब मीत बिसारो, चरण कमल हृदय में उतारो, करण कारण सो प्रभ सम्रथ, दृढ़ कर गहो हो नाम हर वथ, एहु तम संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत, एक आस रखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे, जिस धन कौ चार कुंट उठता वै, सो धन हर सेवा ते पावै, जिस सुख कौ नित बाछे मीत, सो सुख साधु संग प्रीत, जिस शोभा कौ करें भली करनी, सा शोभा भज हर की शरणी, अनक उपावी रोग न जाए, रोग मिटै हर औखद लाए, सर्व निदान मैं हर नाम निदान, जप नानक दरगह परवान, मन पर बोधो हर कह नाए, दैं दिस तावत या बैठाए, ता कौ बिघन न लागै कोए, जा कर दै बसै हर सोए, काल ताती ठंडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पौ बिन सह पूर्ण होए आस, भगत पाए आत्म परगास, तित कर जाए बसै अविनासी, कहो नानक काटी जम फासी, तत विचार कह जन साचा जन्म मरै सोका चोका छा आवागमन मिटै प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव। एओ रतन जन्म का होए उदार हर हर सिमर प्राण आधार अनको पाप न छूटन हारे सिंधत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंसत नानक फल पाए संग न चालस तेरे तना तू क्याल पटावै मूर्ख मना सुत मीत कुटुंब अर बनता इनते कहो हो तुम कवन सनाथा राज रंग माया विस्तार इनते कहो हो कवन छुटकार अस हस्ती रथ सवारी झूठा डंप झूठ पासारी जिंदी है तिस बुझे न बिगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मत तू लह आने भगत बिना बहु डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे आप जपो अवरा नाम जपाव हो सुनत कहत रहत गत पावो सार भूत सत हर को नाओ सह सिपाहे नानक गुण गाओ गुण गावत तेरी उतर समैल बिन सजाए हो मैं बिख फैल हो है चित बसै सुख नाल सास ग्रास हर नाम संभाल छाड़ सियानप सगली मना साथ संग पावे सच तना हर पूंजी संत करो व्यवहार इहां सुख दरगह जयकार सर निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको साला है एक सिमर एको मन आहे एक उसके गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूरन पूर रहो प्रभ व्याप अनेक विस्तार एक ते पय एक अरात परा छत गए मंतन अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नान

अष्टपदी जाचक जन जाचै प्रभ दान कर कृपा देवो हर नाम। साध जना की मांगो धूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर। सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो। चरण कमल शिवला गै प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत। एक ओट एको आधार नानक मांगै नाम प्रभ सार। प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे दृला कोए। जिन चाख्या से जन तृप्ताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने। सुपर परे प्रेम रस रंग उपजै चाओ साध कै संग। परे शरण आन सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन लिवलाग। बड़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभ होयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल। बंधन काट मुकत जन पया जन्म मरण दुख भ्रम गया। इस पुन्नी श्रद्धा सब पूरी रव रया सत्संग हजूरी। जिसका सातिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिसरै जे काल न पानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै। सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरै जे अगन मह राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै। सो क्यों बिसरै जे बिकते काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गांढ़ै। गुरपुरै तत है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो ए काम आन त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवर नाम जपावो।

इत प्रेम रस चाओ मंथन अंतर ही सुआओ नेत्रों पेख दर्स सुख होए मन बिकसै साध चरण धोए भगत जना कै मन तन रंग बिरला को पावै संग एक बस्त दी जय कर मया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही ना जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभु बख्शंत दीन दयाल भगत बछल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आदि पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो है पुनीत भगत पाए लावै मन हीत हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुकत मोख पाए एक निमक हर के गुण गाए अनक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत भली सुकरणी सो बात अनुमंत हृदय बसे पूरन गुरमंत साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक परगास श्लोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदी जब अकार एहो कछ ना दृष्टि ता पाप पुन तब कहते होता जब तारी आपन सुन समाध तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरक सोग कहो किस है व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होत परम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करना है हार ना दूजा जब होत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकत कहो किस कहो गनी जब एक है हर आगम अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुपाए तब शिव सकत कहो हो कित ठाए जब आपे आप अपनी ज्योत तरे तब कवन निडर कवन कत डरे आपन चलित आप करना है हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहां विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो हो किस होए जब अभिगत गोचर प्रभ एका तब चित्र गुपत किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगा दे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्माण तह कौन कहो मान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह छल छिद्र लगत कहो किस जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किसे भूख कवन तृप्तावै करण करावन करना है हार नानक करते करना है सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई जह सर्व कलाप है परवीन तह वेद कतेव कहाँ को चीन जब आपने आप उड़तार है तो सगन अब सगन कहाँ विचार है जय आपन ऊंच अपने आप नेरा तय कौन ठाकुर कौन कही है चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप जय अछल अछेद अभेद समाया ऊहा किसे व्यापत माया आपस कहो आप है आदेश तेह गुण का नाही प्रवेश जय एक कहे एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता जय अपने आप पति आरा तह कौन कथा कौन सुनना है हारा बहु बेअंत ऊंचते ऊंचा नानक आपस कहो आप है पहुंचा जय आप रचियो पर पंच कार तेह गुण मह कीनो विस्तार पाप पुण्य तह पई कहावत को नरक को स्वर्ग बंछावत आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पह पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की यो बख्यान आपन खेल आप कर देखे खेल संकोच है तव नानक एक कह जय अभिगत भगत तह आप जय पसरै पासार संत प्रताप दोहू पाख का अपह तनी उनकी शोभा उनहू बनी अपह कौतक करे आनंद चोज अपह रस भोगन निर्जोग जिस पावै तिस आपन नाए लावै जिस पावै तिस खेल खिलावै बेशुमार अथाह अगणत अतोलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार अष्टपदी आप कथै आप सुनने हार आपे एक आप विस्तार जात इस पावै तां सृष्टि उपाय अपने भाणे लय समाए तुम ते भिन्न नहीं किछ होए आपन सूत सब जगत परोए जा कहो प्रभ जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो सुंदर सी तत् का बेता नानक सगल सृष्टि का जेता जी जंत्र सबता कह हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखे तिस कोय न मारे सो मुआ जिस मनो बिसार है तिस ताज अवर कहाँ को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जा कह सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ
गुण निदान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो बेआब प्रतपाला जीअन बहुपांत जो जो रचो सो तिसह त्याद जिस भावै तिस लय मिलाए भगत करै हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हार नानक एक जानिया जन लागा हर एक नाए तिसकी आस न बिरथी जाए सेवक कहो सेवा बन आई हुक्म बूझ परम पद पाई इसते ऊपर नहीं बिचार जाके मन बस्या निरंकार बंधन तोर भय निर्वैर आन दिन पूजे गुर के पैर यह लोक सुखिए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मिले साथ संग मिल करो आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरण का यह स्वाओ आठ पहर प्रभ पे कहो नेरा मिटे अज्ञान दिन से अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छे नानक फल पावो हालत पालत दोहले हो सवार राम नाम अंतर उड़तार पूरे गुर की पूरी दीख्या जिस मन बसे तिस साच परीख्या मन तन नाम जपो लिव लाए दुख दुर्द मन ते पौ जाए सच वापार करो वापारी दरगह निभ खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक बहुर न आवह जाहे तिस्ते दूर कहाँ को जाए उबरे रखन हार त्याए निरपौ जपै सगल पौ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाय मिटै अहंकार तिस जन को को न पहुंचन हार सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कार्ज पूरा मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पेकत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसे सुहोत निहाल ताके निकट न आवत काल अमर पये अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया सलोक ज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल सिमगरी एक स्कट माहे अनक रंग नाना दृष्टा हे नौ निधि अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत तह नाद कहन न जाइए चर्च बिस्माद तिन देखा जिस आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बार अनंत कट कट दया प्रया भगवंत धरण माहे आकाश पयाल सर्वलोक पूरन प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बैसंतर माहे चार कुट दह दिसे समाहे तिस्ते पिन नहीं को उठाओ गुरप्रसाद नानक सुख पाओ वेद पुराण सिमृत मह देख ससियर सूर नक्षत्र मह एक बाणी प्रभ की सब को बोलै आप अडोल न कबहू डोलै सर्व कला कर खेल है खेल मोल न पाइय गुण है अमोल सर्व ज्योत मह जाकी ज्योत धार रहो स्वामी ओत पोत गुरप्रसाद परम का नास नानक तिन मह एह विश्वास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना कै हृदय सब धर्म संत जना सुने शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी एह रहत सब बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने करण करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बाहर भी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस भावै ता करे विस्तार तिस भावै ता एक अंकार अनक कला लखी नह जाए जिस भावै तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कही है दूर आपे आप भरपूर अंतर्गत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्व भूत आप वर्तारा सर्व नैन आप पेखन हारा सगल समगरी जाका तना अपन जस आप ही सुना आवन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी की नी माया सब कह मद लिपतो रह जो कुछ कहना सो आपे कह आग्या आवे आग्या जाए नानक जा पावे ता लय समाए इसते होए सो नाही बुरा ओ रह कहो हो किने कछ करा आप भला कर तूत अतनि की आपे जाने अपने जी की आप साच धारी सब साच ओत पोत अपन संगराच ताकि गत मित कही न जाए दूसर होए तां सो जी पाए तिसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक एह जान जो जाने तिस सदा सुख होए आप मिलाए लए प्रभ सोए ओ धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत
तन तन तन जन आया जिस पर साध सब जगत तराया जन आवन का यह सुहाओ जन कै संग चित आवे नाओ।

सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद, सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद, आस अनित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग, आप छोड़ बेनती करहो सात संग अगन सागर तरहो, हर तन के पर लिहो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार, खेम कुशल सहज आनंद सात संग भज परमानंद, नरक निवारो उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो, चित चित वो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंग बार नानक जी का यह आधार, उत्तम श्लोक साध के

जय जय शब्द अनाहद वाजै, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै। प्रगटे गोपाल महंत कै माथे, नानक उधरे तिन कै साथे। शरण जोग सुन शरणी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए। मिट गए बैर भय सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन। सुप्रसन्न भय गुरुदेव, पूरन होई सेवक की सेव। आल जंजाल बिकाते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रभ तारी, नानक निब ही खेप हमारी। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकागर चीत। सुख मनि सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसै सो होत निदान। सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। सब ते उच पाए स्थान, बहुर न हो वै आवन जान। हर धन खाट चलै जन सोए, नानक जिस है प्राप्त होए। खेम शांत रिद नव निद, बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध। विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान। चार पदार्थ कमल प्रगास, सबके मद सगल ते उदास। सुंदर चतुर तत् का बेता, समदर्शी एक दृष्टेता।

नहीं हारिया सिखी सिदक केसा स्वासा नाल निभाया जिन्हां दी पवित्र कमाई दा ध्यान करके बोलना जी वाहिगुरु पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारिआं दा ध्यान करके बोलना जी वाहिगुरु प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु नाम चित्ते आवै चित्ते आवन का सत्कार।